اتنے کریم اتنے کریم، ادھر سر جھکا ادھر راضی ہو گئے۔

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: का एक काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
3: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
2: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: Cool King.
5: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
6: तुम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
7: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा.
8: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
9: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
10: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500.
11: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
10: दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो.
12: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शन की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
13: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
14: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो.
15: ये क्या है भाई?
14: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
16: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
14: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
13: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
17: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया. तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है. हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया.
18: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है. इसमें आपकी कोई गलती नहीं.
19: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.
3: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
4: And जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. ये लो बाय जस्ट कैश.
5: And लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
6: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
7: And अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: एंड डेटॉल कूल से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
0: एंड
8: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
9: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरकीब देते हैं. ये आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
12: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
13: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
14: ہماری ذمہ داری ہے.
15: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: Us on facebook.com/fm247365.
17: FM 247365.
18: FM 100. 31 saal FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum Pakistan.
19: Assalamu alaikum Pakistan.

अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आज समीहा, और उम्मीद करती हूं कि आपकी सुबह हंसती गाती खिलखिलाती हो हमारे साथ, और आप मंड मॉर्निंग बहुत एक्साइटेड हो हमारी तरह. ऑलराइट, और जरूरी है कि आप अच्छी सुबह के लिए अपने दिन का आगाज करें अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से भी. और अल्लाह ताला को शुक्र करने वाले लोग बहुत ज्यादा पसंद है, और कराची के लोगों में शुक्रगुजारी मुझे ऐसा लगता है कि कम होती जा रही है. शायद दिल में करते हो शुक्रगुजारी, लेकिन लब पे अक्सर शिकायतें ही होती हैं. एनीवेज, तो हम अपने शो का आगाज करते हैं हमेशा कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. आइए आगे पढ़ते हैं. औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम पढ़ रहे हैं सूरह लैल का तर्जुमा और आयत नंबर 10 से. और जब वो हलाकत में पड़ेगा तो उसका माल उसके काम न आएगा, बेशक हिदायत फरमाना हमारे ही जिम्मे है, बेशक आखिरत और दुनिया के दोनों के हम ही मालिक हैं. तो मैं तुम्हें उस आग से डरा चुका जो भड़क रही है. हमने पढ़ा आयत नंबर 14 तक. अल्लाह ताला को कंजूस लोग अपना पैसा जो बहुत बचा बचा के छुपा छुपा के रखते हैं और खर्च करने के मौकों पर भी खर्च नहीं करते, वो अल्लाह ताला को नहीं पसंद. और जाहिर है ऐसे महंगाई के हालात में इंसान का हाथ जरा तंग हो जाता है और इंसान जरा सोच समझ के खर्च करता है, लेकिन आपके जो फराइज हैं, जो हुकूक हैं लोगों के आप पे, ज़कात सदका, ये कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए. आपके माल में अल्लाह ताला का हिस्सा है, जो भी आपके पास है वो सब कुछ आपका नहीं है, तो इस बात को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए. एनीवेज, और हम अभी अपने शो का आगाज कर रहे हैं. इतने अच्छे, हाँ जी, हम इतने अच्छे नुसरत फतेह अली खान की आवाज में इस कलाम से. आइए सुनते हैं.

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? Schwabe Single Remedies मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और Schwabe Single Remedies भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
3: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन, इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: कूल किंग. बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग.
5: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC.
0: This program is brought to you by
6: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and
5: Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and
1: HBL Freedom Account, Jahan Khwab, वहाँ HBL.
0: And
7: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय चेस कैश.
0: And
9: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: And
10: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
0: एंड
8: डेटॉल फूल्स, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

वेलकम बैक, आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। और कैसी चल रही है आपकी गुड मॉर्निंग? और मतलब अपनी इस गर्मी के अंदर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, बहुत गर्मी होने वाली है, गर्मी का क्या करें हम। और तो अपने आप को जरा बचाएं और मिनिमम ये मैक्सिमम 35 तक कह रहे हैं, मगर फीस लाइक बहुत ज्यादा 40 से ऊपर ही होगा। और अल्लाह करे कि गर्मी हमारे उससे कम हो जाए। और तो ये हमारी बातें हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या आप प्लानिंग करने में अच्छे हैं, मनसूबाबंदी करने में अच्छे हैं? और आई फील एज अ नेशन हम तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है प्लानिंग के। हमने जो कौमें होती हैं वो आगे 50 साल के बाद की प्लानिंग करती हैं, लेकिन हम लोग आज के दिन की ही प्लानिंग नहीं करते। सो वी आर, और पता नहीं हमें फख्र भी है इस बात पर कि हाँ जी मस्त मलंग जो होता है होने दो, लेकिन ये कोई फख्र की बात नहीं है। क्योंकि प्लानिंग करने से कभी आप मतलब पछताएंगे नहीं। हाँ, प्लानिंग ना करके आप हो सकता है पछताएं, लेकिन प्लानिंग करने के बाद अगर आप कोई काम करेंगे तो आपके पछताने के परसेंटेज काफी कम हो जाएगी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप प्लान करें। और कराची जो आपके सामने है, कराची का चप्पा चप्पा आप देख रहे होते हैं, तो ये क्योंकि पता नहीं क्या हमने अल्लाह ताला हम पे रहम करे, अपना करम करे हम पर, कि इंतहाई नाअहल लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और जो प्लानिंग पे यकीन नहीं रखते। जो पहले कोई आएगा वो बोलेगा अच्छा ये कर लो, बोलेगा अच्छा रोड बना लो, रोड वो इंतहाई घटिया क्वालिटी के बनाएंगे क्योंकि वो इतना ज्यादा कमीशन और पैसे उनको खर्च करने ही नहीं है। हालांकि इनका अपना पैसा है ही नहीं। चलो तुम्हारा अपना पैसा है तुम बचा लो, तुम्हारा अपना पैसा नहीं है, बजट है तो कर लो ना खर्च, लेकिन इनको खर्च करने से एलर्जी है, ये बचाते रहेंगे पता नहीं न जाने किसके लिए। खैर, तो वो रोड नहीं बनेंगे, अच्छा रोड बन भी गया तो ख्याल आएगा ओ माय गॉड अब तो इसमें ये वाली लाइन तो डाली नहीं, खोदो खोदो तोड़ो तोड़ो, तो आधा वक्त वो सड़कें खोदती रहती हैं और वो जाती हैं। उनको इतनी भी शर्म लिहाज भी नहीं होती कि यार मतलब दुनिया में लोग रोड्स बना रहे हैं, दुनिया में लोगों के घर में गैस भी है, पानी भी है, बिजली भी है, ये हमारे ही रोड क्यों टूटे वूटे रहते हैं? ऐसे कच्चे ही बनाते हैं ये लोग रोड, खड्डों वाले कच्चे रोड बनाते हैं ताकि यार बाद में तोड़ने होंगे। और इन लोगों को बिल्कुल शर्म ही नहीं आती। मैं तो कहती हूँ अगर किसी का ताल्लुक सुई गैस से है कि इलेक्ट्रिक से है और सिंध गवर्नमेंट से है, तो उनको लोगों को बताना ही नहीं चाहिए कि हम यहाँ काम करते हैं, क्योंकि इनके लिए दिन रात हम दिल से बदुआएं दे रहे हैं, दिल से सुबह शाम। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल मत इतराएं अगर आपका ताल्लुक इन तीन, और भी मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं खास उस लिस्ट के लिहाज से तो लोग ही बहुत कम बचेंगे जिनको बदुआएं नहीं मिल रही और जो बिल्कुल लीगल काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि बिल्कुल ही हमारे मनसूबाबंदी का कुछ भी प्लान या फैमिली प्लानिंग नहीं करते लोग, मतलब वो तो बाकी दूर की ही बात है। खैर, आप लोगों के मैसेजेस आ गए हैं। क्या कहते हैं, मॉर्निंग सैम, नो सीट बेल्ट अलर्ट एंड आई गॉट फाइन। ओहो हो, फाइन हो गया, सीट बेल्ट अलर्ट नहीं हुआ और फाइन। ओ दिस इज सो क्यूट, ये क्या है आपकी सीट, दिस इज सो क्यूट, आई रियली लाइक इट, व्हाट इज इट? ओके, और वो जो

Okay. और वो जो दिस इज लाइक सुपर डुपर क्यूट. खैर आई होप कि आपका ज्यादा नुकसान ना हो और चलान भी ना हो. ये मैं बताऊँ, इस गवर्नमेंट को ना बहाने चाहिए पैसे लेने के. मैं कह ले लो पैसे, ई चलान में पैसे, इशारे फैसले की लेन में पैसे. लेकिन आप लोगों पे भी तो फाइन लगना चाहिए ना, कितना बेकार क्वालिटी का आप लोग काम करते हैं. और आपको इशारे फैसले और इशारे भुट्टो के अलावा और कोई इशारा नजर ही नहीं आती कि पूरे शहर में मजीद इशाराएं हैं. अभी इशारे भुट्टो के पास ही एक जगह है जिसे कहते हैं शमा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम. और वहां पर उन्होंने रोड खोद दिए और वहां पे इतनी सारी दुकानें खाने पीने की, और वो रात के वक्त वो लोग खोद देते हैं, वो पूरे बिजनेसेस उनके अफेक्ट होंगे. और बंदा बिजनेस करना भी कराची में, मैं तो कहती हूँ सलाम है उन लोगों को जो कराची के अंदर हिम्मत करते हैं बिजनेस करने की, अपनी कोई दुकान भी खोलने की. क्योंकि इतने मसले हैं ना यहाँ बिजनेस करने के लिए, इनका बस नहीं चले कि ये टैक्स लगा दो, वो टैक्स लगा दो, उसके और उसके बदले में सहूलियात कोई ना दो. तो सिंध गवर्नमेंट, अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे. और न जाने क्या दुश्मनी है कराची वालों की आपसे कि आपने कराची के लिए बिल्कुल भी काम करना ही नहीं है, चाहते ही नहीं है करना. और अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो रफ्तार एक यूट्यूब चैनल है, उसने उस पर एक वीडियो बनाई है कि वाई कराची को तबाह हुआ, हाउ कराची इज डिस्ट्रॉयड. और उसके खिलाफ एज एक्सपेक्टेड पीपल्स पार्टी ने जो है उनके नुमाइंदों ने उन पर केस भी कर दिया कि खबरदार जो आपने हमारे बारे में इतना सच बोला. तो वो फिर वो हो सकता है कि वो वीडियो वो लोग हटा ही दें, लेकिन इससे पहले को वीडियो हट जाए, मैंने शेयर भी किया अपने पेज पे, आपने जरूर जरूर देखनी है. और आपको पता चल जाएगा कि कराची कितने सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय हो रहा है बहुत प्लानिंग के साथ. हम लगता है लोग प्लानिंग के साथ शहर डेवलप होती है, प्लानिंग के साथ शहर डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को बस सपोर्ट करना चाहते हैं जो उनके वोटर्स वोट बैंक का हिस्सा बने. खैर अगर ये हमारे लिए काम कर लेते कराची वालों के लिए, इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि अगर ये हमारे लिए काम करते या हमारे लिए कुछ अच्छा करते तो हम ही उनको वोट दे रहे होते, इनको टेंशन ही नहीं होती. लेकिन काम करने की नीयत ही नहीं है और काम करने की अहलियत भी नहीं है, तो काम कैसे होगा. खैर बात है आपकी, क्या आप मंसूबाबंदी पे यकीन करते हैं या कुछ ना कुछ प्लानिंग करने में आप अच्छे हैं, तो हमें जरूर बताएं, हमें मैसेज करें आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे या @आरजे समीहा इंस्टाग्राम पे. इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का. इसके अलावा आप मुझे एक और तरीके से भी मैसेज कर सकते हैं कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर. इंतजार रहेगा आप लोगों के पैगामात का. और अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं अच्छी के आवाज में ये गाना.

0: ऑलराइट जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आजय समीहा। होपफुली आपकी मंडे मॉर्निंग अच्छी होगी और आप एक्साइटेड होके बड़ा जो है डांस करते हुए ऑफिस जा रहे होंगे। ऐसे में लोग होते हैं कुछ लोग एक्साइटेड, लेकिन ज्यादातर लोग एक्साइटेड नहीं होते। खैर, आज का हमारा टॉपिक है, एंड आई एम श्योर कि आप इसमें बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इफ यू आर गुड एट प्लानिंग, क्या आप अच्छी प्लानिंग करते हैं, कोई चीज आपने प्लान करके हासिल की है, और तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो हमें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लान करना, ऑर्गेनाइज होना और वक्त को प्लान करना, पैसे को प्लान करना, ये वाली ऐसी चीजें हैं जो हमें स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं सिखाई जाती, और जिनको ये काम आता है वो वाकई में बड़े कामयाब होते हैं लाइफ में। एनीवेज, तो इंतजार है आप लोगों के मैसेजेस का। आप लोग मुझे अपने पैगामात भेज सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी, @RJSameeha, और समीहा नाम है मेरा, SAMEEHA। और इसके अलावा एक और तरीका है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें KHI आपका नाम, आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर। रहीम बलोच, रमजान गुजर और नजीर खोसो साहब का भी बलोचिस्तान से मैसेज आ चुका है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
2: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से जायद इनामात।
4: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
6: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
8: ये क्या है भाई?
7: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
10: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
11: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
12: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
13: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
3: and HBL Freedom Account, Jaha Khab, Vaha HBL.
4: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
5: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
6: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: एंड अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: एंड डेटॉल फेस सोप, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
9: एंड तूफान है, हर जीत की पहचान है।
10: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365

0: वेलकम बैक, आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। और अभी हम चलते हैं हेल्थ अपडेट की तरफ।
1: हेल्थ अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100 पाकिस्तान।
0: ऑलराइट जी, बात हो रही है हेल्थ अपडेट की। और हेल्थ अपडेट की तरफ, अब हम गर्मी में ऐसे कौन से खाने खाएं जिससे हमारी गर्मी थोड़ी कम हो, तो उसमें है कि जी अपने पैसों से आप खाएं। वैसे कोई और खिला भी सकते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी खिलाएं। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप खाएं तरबूज। तरबूज इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, और वाटरमेलन में 92% पानी होता है, तो वो बड़ा अच्छा होता है आपकी। खाएं वाटरमेलन, और कैलोरीज भी कम होती हैं, तो इज गुड कि आप वाटरमेलन आराम से खाएं। और इसके अलावा आप और भी लेमन अपने पानी के अंदर डाल सकते हैं, तो ये इट्स अ वेरी गुड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक में शुगर कंटेंट बहुत हाई होती है। और अक्सर समझने बजाय इसके कि हमें लगता है कि हम वेट लूज करेंगे, बल्कि हम वेट गेन कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ऐसी शुगरी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और शुगरी खाने खा रहे होते हैं, तो हमारा वजन बचाए इसके के कम हो। कुछ लोगों का वजन कम होता है और मेरा वजन बढ़ा होता है। खैर, मेरा मुझे लगता है मौसम की कैद नहीं है, वजन बढ़ ही रहा है। और इसके अलावा आप सैलेड का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, खीरा खाइए, खीरा पुदीना खाइए, वो मिंट मार्गरीटा बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसमें भी शुगर अगर है तो अवॉइड करें। लेकिन पुदीने का रायता बड़ा अच्छा है, चटनी अच्छी है, क्यूकम्बर जो है खाएं, खीरा जहां मिले खाना शुरू करें। वैसे खीरा आपने देखा है, लोग ऐसे चलते फिरते खा रहे होते हैं, कोई पूछता भी नहीं है खीरे का। इस तरह केले के ठेले पे लोग आराम से चुपचाप केला खुद ही उठाते हुए जा रहे होते हैं, कोई मसला ही नहीं है। इसलिए हमारे अपनी हमारी कोडिंग के भले वो कितने भी खूबसूरत इश्तहार बनाए, कितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इश्तहारों में ले लें, लेकिन ये जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, स्पेशली बच्चों की सेहत के लिए। इसमें हाई शुगर कॉन्टेंट है, बच्चे हाइपर हो जाते हैं और उनके दांत बहुत जल्दी इफेक्टेड हो। जब देखा होगा बच्चों के दांत बड़े अफेक्टेड हैं, कैविटीज हैं, तो प्लीज अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी ना पिलाएं, इट इज नॉट एट ऑल हेल्दी। और अभी से आदत पड़ गई तो फिर खैर। और ये वो बंदी कह रही है जैसे बचपन में तो छलते लगा लगा के कोल्ड ड्रिंक पिए, लेकिन आई नो अब जब से मैंने छोड़ी है लाइफ इज बेटर। और इसके अलावा लस्सी आप पी सकते हैं, लेकिन वो भी कोशिश कीजिए कि हो सकता है कि आप पे शुगर का इतना असर नहीं होता हो तो आप चीनी वाली लस्सी पी लें, लेकिन नमकीन लस्सी, छाछ इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। हमारी अपनी ड्रिंक्स बहुत अच्छी हैं। और आप मिल्क शेक भी पी सकते हैं, लेकिन बगैर शुगर के। उसमें वैसी फलों में जैसे कि बनाना शेक, मैंगो शेक, उसमें ऑलरेडी फ्रूट के अंदर ही इतना शुगर कॉन्टेंट होता है कि ऊपर से चीनी डालने की जरूरत नहीं है। आप बगैर शुगर के ट्राई करें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और राइट, और तो ये है हमारी कि आपने जो है ना गर्मियों के अंदर अपने सर को बहुत प्रोटेक्ट करना है। और गर्मी बहुत तेज है और इस हफ्ते शायद गर्मी ही चलेगी, तो आपने ना अपने सर को कवर रखना है। अक्सर लोग गीला कपड़ा करके जो है ना, सोचा आप गीला कपड़ा करके गाड़ी चला रहे हो, हैं अजीब ही लग रहे होंगे आप भी, लेकिन कोई खासतौर पर जो गंजे लोग हैं वो भी अपने सर का ख्याल रखें, क्योंकि डायरेक्ट हीट उनके सर पे पड़ेगी। प्लीज अपने सर को कवर रखें, ऐसे रखते भी हैं अक्सर, लेकिन ये है कि आप अपने सर का बड़ा ख्याल रखें। तो खैर अच्छा जी, प्लानिंग इतनी की है लेकिन चार चार हो मगर एक से ज्यादा नहीं रहती, अच्छी बात है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तो ये जरा इस बात को भी आप क्लैरिफाई करें। एंड जी, हम प्लानिंग की बात करें कि आप क्या प्लानिंग करने में अच्छे हैं, आर यू अ गुड प्लानर, या आपने कहा बस जो होता है, द बेस्ट प्लान इज नो प्लान। लिटरली मेरे डायलॉग्स होते थे कि बेस्ट प्लान इज नो प्लान, लेकिन नाउ आई फील कि नहीं भाई, जो लोग चीजें प्लान करके करते हैं, सोच समझ के करते हैं, वो ज्यादा कामयाब होते हैं, बजाय उसके जो लोग हर चीज अल्लाह पे छोड़ दो। भाई अल्लाह पहले आप प्लान करें, अल्लाह पे जरूर छोड़ना चाहिए, कोई भी प्लान अल्लाह की मर्जी के बगैर पूरा नहीं हो सकता, लेकिन एक इंसान होगा जो प्लान बना के अल्लाह पर छोड़ेगा और एक कोई इंसान होगा जो पूरा ही पूरा मामला अल्लाह पर छोड़ देगा। तो मेरे ख्याल से आप भी कुछ मेहनत कर लें और प्लान कर लें, और राइट, और आगे तो है ही अल्लाह। तो अभी आप मैसेज करें आते समय कि आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और क्या कहते हैं इसके अलावा एक और तरीका भी है। आलम साहब का भी मैसेज आ गया, आलम कह रहे हैं, आलम दिस इज अ फैक्ट दैट प्लानिंग इज नेसेसरी समिया, एंड aunts are also planning, but some people say man imposes, God disposes. बिल्कुल सही है, लेकिन plan करना, plan ना करने से बेहतर है. और जब आप plan करते हैं, आपको पता है अच्छा ये मेरा गलत plan था, कोई बात नहीं है, मैं इसको सही कर सकता हूँ. कुछ लोग मैंने देखा पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही लोग अपनी जिंदगियां plan नहीं करते, अपने पैसे plan नहीं करते, और बाद में पछताते हैं कि काश हम उस वक्त सोच लेते, उस वक्त पैसा बचा लेते, उस वक्त टाइम बचा. स्टूडेंट्स कहते हैं काश कि उस वक्त हम टाइम जाया नहीं करते, पढ़ लेते. एग्जाम्स जिनको देने होते हैं वो कहते हैं यार काश कि हम अपना टाइम अच्छे तरीके से मैनेज करते. तो प्लानिंग ऑलवेज हेल्प्स, एनी प्लान इज बेटर देन नो प्लान, जस्ट आई फील दैट. और बात में आपको पता होता है यार कि जरूरी नहीं है कि 100% कोई प्लान भी इंप्लीमेंट नहीं होता, स्पेशली पाकिस्तान में 50% भी हो जाए बड़ी बात है. तो इसलिए जरूरी है कि आप प्लानिंग करते रहें और हमें मैसेज भी करते रहें. हमें आप मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे या एट आजय समिया इंस्टाग्राम पे. और तीसरा तरीका भी है दोस्तों कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज, और उसको भेज देंगे 3636 पर. इकबाल हुसैन का गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया है. इकबाल हुसैन साहब तो मुझे लगता है बड़े प्लानर आदमी है, मतलब हर चीज प्लान करके सोच समझ के करते हैं. तो हम इंतजार रह करके सामने का कि आप कितने बड़े प्लानर हैं. हाँ, क्या क्या प्लान कर लिया, कितने घर बना लिए, कितनी गाड़ियां खरीद ली, जरा हमें भी तो बताएं. हो सकता है हम भी आपके इल्म से मुस्तफीद हो सके. मुस्तफीद उर्दू पे गौर चेक करें मेरी उर्दू. ऑलराइट, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद आजय सुमिहा.
1: It's 8:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: Cool King. बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई.
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and
2: Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.
3: And
4: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
5: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
0: एंड
6: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
7: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
8: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
0: एंड
5: डेटॉल फूल से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए
0: एंड
9: तूफान है हर जीत की पहचान है ये।
10: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखा दही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा, तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
11: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
14: हमने आप ना कुछ 3 बार मौत देखे
15: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूँ कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
16: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया।
13: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
17: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
13: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनो बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
18: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
19: FM 247365
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
19: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
3: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا.
20: جی ہاں مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
19: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہم اس سے کیا.
3: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں صرف واک سے یہ کم ہوگی.
20: موٹاپا ایک بیماری ہے صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
19: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
20: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں.
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
19: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
3: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: पजामस में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBO।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
5: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
7: ये क्या है भाई?
6: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
9: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
10: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
11: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.
3: And
4: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
5: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
0: एंड
6: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
7: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
8: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
0: एंड
5: डेटॉल फूल से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए
0: एंड
9: तूफान है हर जीत की पहचान है
10: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
11: FM 247365.
12: Let's celebrate
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Let's celebrate the journey.
15: FM 100 Traffic Update.
16: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एफएम 100 पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फारूक हज़ार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफएम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक कुछ जगहों पर ट्रैफिक का इसका दबाव देखा जा रहा है, जिसमें हसन स्क्वायर से वो तमाम ट्रैफिक जो जा रहा है जेल चौरंगी और वहां से शाहराह कायदीन की जानी दरमियानी रास्ते पर कुछ दबाव का शिकार है। इसके साथ साथ कायदाबाद से मरी सिटी और मरी सिटी से बलोच कॉलोनी की जाने माने वाले ट्रैक पर भी दरमियानी रास्ते पर कुछ ट्रैफिक ऑफिस टाइमिंग की वजह से स्लो है, लिहाजा वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
15: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: 100 FM.
4: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: किसने कहा था पैसा

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and
2: Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL,
3: and अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
4: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
0: एंड
5: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
6: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
7: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
0: एंड
4: डेटॉल फूल से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए
0: एंड
8: तूफान है हर जीत की पहचान है
9: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
10: FM 247365
11: 100 FM.
12: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
13: Ye paigham hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

और लिटरली मैंने कहा आज की लड़की खवातीन का कि बड़ा एक होता है कि यार आज क्या पकेगा, और वो अक्सर अपने हस्बैंड को फोन करी होती हैं, कहती हैं यार आप बताएं क्या पकाएं आज, वो कह रहे हैं यार यहाँ पे 10,000 मसले चल रहे हैं, मैंने अभी मीटिंग में जाना है, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि खाना क्या बनाना है, जो भी बनाना है बना लो, मतलब वो चिढ़ जाते हैं इस बात से। लेकिन सीरियसली नसीम पटेल जी मुझसे एग्री करेंगी कि ये सोचना कि आज क्या पकेगा और ऐसा खाना जो सबको पसंद आ जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतने मसले, और रोजाना सोचना। कुछ लोग बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम, उन्होंने वो बनाया हुआ होता है कि नहीं इस दिन ये पकेगा इस दिन ये पकेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आप ऐसी डिश बना लें होता कुछ नहीं है, वही 4-5 डिशेस वही बार बार बन रही होती हैं। और बेस्ट गर्मी की डिश जो है वो है आलू चावल, मतलब जिस घर में जाओ आलू चावल इज रेडी, क्योंकि चावल गर्मी में लोग आराम से खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, और हर वक्त ये आलू चावल ही बन रहे होते हैं, जगह जगह आलू चावल आपको मिलेंगे, और ये एक फेवरेट डिश है क्योंकि ये आसानी से भी बन जाती है डिश, और तो फिर क्या करें। ऊपर से गैस वालों ने वैसी जिंदगी हमारी वो की है, वो डिसाइड करते हैं कब खाना बनना है, वो डिसाइड करते हैं कब खाना बनना, बस अब खत्म। और मैं तो कहती हूँ गैस वालों कि भाई जो टाइम है उस टाइम पे तो दे दो गैस, मतलब कि ठीक है 2-3 घंटे दे रहे होते हैं एक टाइम पे, वो तो टाइम पे दे दो, मतलब इनकी इतनी भी प्लानिंग नहीं है। मैं आपको बात बताऊं कि हम दुनिया के वर्स्ट प्लान सिटीज में रह रहे हैं। अब मैं सर्च कर रही थी, वो कह रहे हैं कि भाई वर्स्ट प्लान सिटी जो है ना वो इंडोनेशिया का सिटी है जकार्ता। मैंने कहा छोड़ो भाई हटाओ, कराची तो नंबर वन होना चाहिए उसके अंदर। और चाइना की बुराइयां की हुई, दुबई की बुराइयां की हुई कि दुबई नहीं अच्छा और वो बिल्कुल वेल प्लान नहीं है वहां पे, वैसे वहां ट्रैफिक जाम बहुत मैसिव होते हैं, वहां इतने रोना आ जाए आपको दुबई के अंदर जब आप सुबह के वक्त जा रहे होते हैं ऑफिस में, तो 1-2 घंटे तो आप ट्रैफिक जाम का मार्जिन रखते हैं। लेकिन सोचे कि दुबई को लोग बुरा भला बोल रहे हैं तो कराची कहाँ जाएगा उसके अंदर, कराची का तो कोई हाल ही नहीं है, क्योंकि प्लानिंग का आइडिया मुझे इसी पे ही आया कि हम कराची को देख के कि आपने जिंदगी ऐसे गुजारनी है जैसे कि कराची नहीं बन सका। जो सिंध गवर्नमेंट करती है उसका ऑपोजिट करें, उन्होंने प्लान नहीं किया मगर आप जरूर प्लान करें, वरना आपकी जिंदगी भी अल्लाह ना करे, वैसे दुश्मन को भी ये बद्दुआ आप नहीं दे सकते कि कराची ऐसे, बद्दुआ है ये। अच्छा ऐसा कह रहे हो तुम, मुझे मेरे पैसे खा गए, अल्लाह करे तेरी जिंदगी ऐसी हो जैसे कि कराची के रोड, ये एक बद्दुआ है। खैर बातें चलती रहेंगी, क्या बात करते हैं हम, एक गाना सुनते हैं, राइट, सो लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक।

0: कोई समझाए कि हम समझाएं क्या, तो बस वो कहें समझा रहे बेगाना क्यों हो गए। तो शादी से पहले ऐसी बातें होती हैं कि बस बंदा उसको मिल जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि जिंदगी में अगर कुछ और प्लान कर लिया होता, अगर घर अपने नाम पे कर लिया होता तो शादी के बाद बड़ी आसानियां होती हैं। लेकिन लोग शादी कर लेते हैं, बाद में एहसास होता है कि इतना पैसा शादी में लगा दिया, उससे हम बहुत बेहतर चीजें भी कर सकते थे। तो प्लान करना चाहिए। मेरा एक दोस्त था, उसने शादी पर साफ बोल दिया था, उसने एक ही एक फंक्शन किया था, जस्ट वन रिसेप्शन, और उसने कहा था कि मुझे सिर्फ आप लोग कैश दीजिएगा। मुझे बहुत बुरी बात भी लगी थी उसकी कि यार ये क्या मतलब, हम जो चाहे दें। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे सिर्फ कैश चाहिए, मुझे फजूल के गुलदान और बर्तन नहीं चाहिए। एंड आई थिंक काफी सक्सेसफुल है अब तो, मुझे लगा। नाउ ही इज लाइक एट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेरा दोस्त था कॉलेज में, नाउ ही इज लाइक ऑन द बोर्ड, लाइक यू नो, और बैंक के प्रेसिडेंट के साथ उसका उठना बैठना होता है। तो मतलब सीन है काफी, मतलब वो समझदार था इस मामले में और पैसे भी बचाता था। तो खैर, आप भी जरा पैसे बचाएं और थोड़ा प्लान कर लें अपनी जिंदगी में, क्योंकि कराची एक जंगो जदल से भरा शहर है। अगर इसमें आपका कोई प्लान नहीं है कि इस शहर की मुसीबतों से कैसे निपटना है, तो आप पीछे रह जाएंगे। हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या एट आरजे समिया इंस्टाग्राम पे। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी कराची से लड़ने में, लेकिन दुआ जरूर करूंगी और आपका मैसेज भी शामिल करूंगी। और मिलेंगे हम आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: आराम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाद वहां HBL।

0: फ्रेंड्स में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल फूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनाम 2500।
3: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
4: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
5: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
6: ये क्या है भाई?
5: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
8: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
9: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
10: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
11: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
3: and HBL Free Ramakam, Jahan Khwab, Wahan HBL.
4: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
5: And जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
6: And
7: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
8: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
9: And अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: एंड
10: डेटॉल फूल से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
6: एंड
11: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
12: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
13: FM 247 365.
14: Good morning, Pakistan, on FM 100.

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आप एक अच्छे प्लानर हैं, क्या आप हर चीज प्लान करते हैं या आपने बगैर प्लान के जिंदगी अपनी गुजारी हुई है. प्लान करना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी को, और ये भी सोचना कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है. क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हैं, आपको इस दुनिया से जाना है. आप कितनी भी जिंदगी जी लें, भले वो ट्रंप हो, भले वो यहाँ का हमारा प्रेसिडेंट हो या दुनिया का कहीं भी अमीर तरीन इंसान हो, उसको एक दिन यहाँ से जाना है. फिर वो ये भी सोचे कि वो जितना माल बनाना चाह रहा है, मतलब एक दिन तो चला जाएगा, उस आगे की आपने क्या प्लानिंग की है. तो असल चीज़ तो यही है कि आप आखिरत की क्या प्लानिंग कर रहे हैं. इसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला से आप अपना रिश्ता मजबूत करें. आपका जो भी स्केड्यूल हो, आप उसमें ये जरूर सोचें कि आप अल्लाह के लिए कितना वक्त निकाल रहे हैं. क्या आप रेगुलरली टाइमली नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी बात है. आप दुनिया में कितने ही कामयाब सही, लेकिन अगर आप नमाज टाइम पे नहीं पढ़ रहे हैं तो जर यकीन माने कि आप कोई कामयाब इंसान नहीं है. राइट. तो खैर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे और आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं. क्या कहते हैं आबिद मीकर, मैडम अपने पिछले दिनों भी मेरे सारे बच्चे, आप कितने सारे बच्चे नहीं है, सारे बच्चे 9-10 बच्चे होते हैं, और मेरे लिए आज भी आपने कुछ अर्ज किया. अल्लाह का शुक्र है ना, इतनी सारी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने प्लानिंग की सबको किसी ना किसी जगह सेटल करना है, किसी ना किसी हुनर में, कौम के माशरे के लिए, दीन इस्लाम के लिए, खानदान और पड़ोस के लिए फायदेमंद इंसान बनाना है. अल्लाह पाक मुझे अच्छे मकसद में कामयाब फरमाए. बिल्कुल सही बात है, और मुझे तो हम लड़कियों से ही ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि लड़कों के हाथों में इतने दिनों से मुल्क दिया हुआ है, उन्होंने बेड़ा गर्क ही किया हुआ है. तो अगर पढ़ी लिखी खवातीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खवातीन लड़कियों का जो लोग डिग्रियां वेस्ट कर देते हैं जी, पढ़ के भी वो खाना बना रही हैं, तो भाई इस तो पढ़ने की क्या जरूरत थी. पढ़ के, और सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने अपने वो अच्छी माँ बनती हैं, अच्छी टीचर बनती हैं, वो बहुत कुछ मुल्क और कौम के लिए कर देती हैं जो जिनकी जो खवातीन पढ़ी लिखी होती हैं. तो ज़रूरी लड़कियों को पढ़ाएं, और प्लान करना बहुत ज़रूरी है उनकी लाइफ को, और आखिर तक प्लान करना, इंडिपेंडेंट बनाना फाइनेंशियली, ये भी बहुत ज़रूरी है. और जो लोग बहुत कम उम्र में अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं और वो पढ़ी लिखी नहीं होती ज़्यादा, या फिर उनके पास मतलब पढ़ा लिखा होना सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, ये आपको शऊर देता है और आपको बहादुर बनाता है. तो फिर अगर उनकी शादी नहीं चलती किसी भी वजह से, या उनके हस्बैंड को कुछ हो जाता है, तो फिर वो सर्वाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. फिर आगे जब उनके बच्चे होते हैं, फिर उनका सारा बोझ उनके भाइयों पे या बाप पे आ जाता है, विच इज़ बच्चों के लिए, उनकी अपनी जात के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है. और ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं अगर प्लानिंग की जाती, अगर वो पढ़ाई करती या पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती. तो ये बहुत ये होता है कि जी शादी कर दो, शादी करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको आपको देखना चाहिए कि आप किस माहौल में रह रहे हैं. अगर आप बहुत अमीर मुल्क में रह रहे हैं, जैसे सऊदी अरब है या अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ ख़वातीन के कफ़ील होते हैं और वो कफालत कर रहे होते हैं, ख़वातीन को इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर कोशिश ये करें कि अपनी फैमिली के लिए खूब प्लानिंग करें. बच्चे हो गए तो हो गए, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूर प्लान करें. एक बहुत मशहूर बंदा है, इसका नाम रिचर्ड किंग रिचर्ड, उसने सीरीना विलियम्स और वीनस विलियम्स जो बहुत मशहूर टेनिस प्लेयर्स हैं, उनके वालिद पे मूवी बनी है किंग रिचर्ड, और उसमें दिखाया है किस तरीके से उन्होंने बेटियों के पैदा होने से पहले ही प्लान किया हुआ था कि बेटियों को वो क्या बनाएंगे और बेटियों को कहां तक पहुंचाएंगे, और उन्होंने अपनी प्लानिंग कंप्लीट की. हालांकि उनके ना इतने ज्यादा रिसोर्सेज थे, ना वो ज्यादा अमीर थे, लेकिन सिर्फ प्लानिंग से. और जब उनकी बेटी चैंपियन बन गई, ग्रैंड स्लैम जीत गई, तो उसने कहा मुझे कोई हैरत नहीं हुई, बिकॉज आई प्लान्ड इट दैट वे, मैंने ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था. तो जब आप प्लान करते हैं तो बहुत फायदे होते हैं, और जब आप प्लान करें और फिर अल्लाह ताला पे बाकी काम छोड़ दें, फिर यकीनन कामयाबी होगी. लेकिन यहाँ जिस तरह पाकिस्तान में लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे भी दुनिया में आए जा रहे हैं, और आप आवाम लिटरली मैं देखती हूँ सड़कों पे सूखे सूखे लड़के, अंडर एज लड़के जब बाइक चला रहे होते हैं, मैं सोचती हूँ उनके अम्मा अब्बा ने क्या सोचा हुआ है और क्या सोचकर इनको रोडों पे छोड़ दिया है, जब इतने खराब हालात हैं. खैर, हमारी बातें चलती रहेंगी, क्यों ना एक गाना हो जाए. आइए सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में ये गाना, और आई होप कि आबिद अमीर अल्लाह ताला को कामयाबी दे और रेस्टोरेंट आप जरूर बनाएं और मुझे भी वहां पे दावत दें. आइए सुनते हैं ये गाना.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: 100 FM.
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
4: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL।
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
6: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
7: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
8: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: एंड अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: एंड डेटॉल कूल सोप, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
0: एंड
9: तूफान है ये, हर जीत की पहचान है ये।
10: खवातीनों हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में साहित कर चुका होता है। बकती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: FM 24/7/365

0: बच्चे आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आजय समीहा। आज हम बात कर रहे हैं यहां पे कि आप प्लानिंग पे यकीन रखते हैं या नहीं रखते, और आप लोगों के पैगाम मेरे पास आए। नसीन पटेल जी का मैसेज है। नसीन पटेल जी मुझे लगता है बहुत ऑर्गेनाइज और वेल प्लान खातून है, क्योंकि जब वो मेरे पास आती है, जब भी उनसे मेरी मुलाकात हुई है, लगती हैं और जिस तरीके से वो चीजें लेकर आ रही होती हैं मेरे लिए खाने की, तो बड़े तरीके से, और फिर सुबह उठ के प्लान करना, आई थिंक दैट्स रियली रियली नाइस एंड तो आई रियली एडमायर हर, क्योंकि प्लान लोग ही सुबह उठ सकते हैं जल्दी, क्योंकि ज्यादातर दुस्त तो काहे लोग हैं, वो बेचारे ऑफिस ही मुश्किल से पहुंच रहे होते हैं, उन्होंने क्या उठना है सुबह उठ के। और मेरा शो सुबह शो सुन रहे होते हैं चलो ऑफिस जाने वाले तो बड़ी बात है, लेकिन वैसे कहाँ पे सुबह के लोग अलग हैं, और मतलब मुझे लगता है कि जो सुबह जल्दी उठने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। खैर मेरा अपना मानना है, लेकिन खैर रात को जागने वाले भी होते हैं, मीडिया के लोग जो म्यूजिक बना रहे होते हैं या जो ड्रामा फिल्म प्रोडक्शन लाइन के लोग होते हैं वो अक्सर रात में काम करते हैं। एनीवेज तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि दुनिया की सबसे ऑर्गेनाइज और इफेक्टिवली मैनेज्ड नेशंस में से एक है स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और डेनमार्क। और जाहिर है कि स्विट्जरलैंड में लो करप्शन है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है बड़ी अकाउंटेबल है, आप एहतसाब के लिए हर वक्त वो है तैयार, ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क्स है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो सोचिए ऐसे अगर आपको लीडर्स अच्छे मिल जाए जो पढ़े लिखे हों, जिनका एक विजन हो, तो पूरा मुल्क तरक्की करता है। और हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमारे लीडर्स जो है, हमें खासतौर पर हमारे सिंध के अंदर जो लीडर्स हमें मिले हैं, जो हर वक्त चाहते हैं कि इनकी तारीफ की जाए, लेकिन तारीफ के लायक कोई काम नहीं किया। मैं कहती हूँ यार एक रोड बना दो, मगर ढंग से बना दो, बगैर अपनी तस्वीरें लगाए वहां पे। लिटरली मैं तो ये बोलना चाहती हूँ मैं कि भाई खुदा के लिए वो तस्वीरें, इतनी गंदी तस्वीरें आपने लगाई हुई हैं कि वो बंदा बोले कि हाँ रोड तो अच्छा है, लेकिन जो ऊपर आपने हर दो पोल के बाद तस्वीरें लगाई हैं, इंतहाई चीप। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग जो इतने चीप बनाते हैं पेनाफ्लेक्स के सारे इंप्रेशन ही खत्म हो जाए। और मैं कहती हूँ चलो एक मक्खन लगाना है आपने, एक बंदे को लगा लो ना एक बोर्ड पे, नहीं नहीं नहीं पांच लोगों को लगाएंगे। बच्चे अब अपने पांच पोल लगाने हैं तो एक एक करके सबकी तस्वीर लगा लो, नहीं पहले आपने उन लोगों की तस्वीर लगानी है जिसकी आप चमचागिरी कर रहे हैं, फिर अपनी भी तस्वीर लगानी है कि हमने बनवाया, ताकि आपको दिल जी भर के हम बता सकें कि यार बहुत ही कोई बेकार सब स्टैंडर्ड काम किया है। मैं आपको से यही कहूंगी कि यार मतलब कौन लोग है ये। खैर बात हो रही है स्विट्जरलैंड की, हम कहाँ चले गए। तो स्विट्जरलैंड में लोग जो है ना अपना पैसा भी इसलिए रखवाते हैं, ये जो बड़े बड़े जो क्या कहते हैं सियासतदान हैं, वो इसलिए भी कि भाई वहां पे करप्शन ही नहीं है। काश कि हमारे मुल्क में सिर्फ एक चीज हो जाए कि करप्शन पे ना, मतलब अगर पता चल जाए कि रिश्वत कोई ले रहा है तो उसके बस डायरेक्ट हाथ काटो, क्योंकि चोरी हुई होती है रिश्वत, और यही होना चाहिए लॉ, या सख्त से सख्त सजा हो तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है, वहां रिश्वत खत्म हो सकती है। प्रॉब्लम ये कि यहाँ माइंडसेट ऐसा हो गया कि बगैर रिश्वत की फाइल ही नहीं इधर से उधर होती, तो वहां पे उस मुल्क के अंदर क्या आपने प्लानिंग करनी है, और मतलब क्या काम होना है वहां पे। आप दुनिया के बेहतरीन लोग भी ले आए यहाँ पे कि जी रोड बना दो या हमारे लिए प्लान कर दो, मगर जब आपकी नीयत ही नहीं है, जब आपने हर चीज में ब्राइबरी इन्वॉल्व है, तो फिर क्या होना है। खैर हमने आपको बताया कि दुनिया के बेहतरीन लोग मतलब लोग प्लान करते हैं, और आप वो लोग, खैर मुल्क प्लान हो या ना हो, रोड प्लान हो या ना हो, आप अपनी लाइफ जरूर प्लान कर लें। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे। और मुनज़्ज़म साहब आप हमें सुन रहे हैं कि आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मैं क्या करूं यहाँ पे हर चीज ही कट कट के आ रही है, भले वो गैस हो, भले वो लाइट हो, भले वो तनख्वाह हो, हर चीज ही कट कट के आ रही होती है। अल्लाह हम पे रहम करे। अब्बास अंसारी साहब का मैसेज आ गया जाते जाते। अब्बास अंसारी बड़ी देर की मेहरबान आते आते, तो अब्बास अंसारी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आजय समिया, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्लानिंग इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स वन कैन नॉट अचीव एनी थिंग इन डेली लाइफ। मोस्ट ऑफ द पीपल राइट डाउन थिंग्स टू डू टू बी कम्प्लीटेड डेली वर्क, सो हूएवर प्लान्स ऑर्गेनाइज आई थिंक ही अचीव्स इट and I've seen them successful. Dubai was a village and they planned to develop it in an excellent manner. It is a good example. Dubai मतलब पहले अच्छा था, लेकिन अब जो दुबई के हालात हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि दुबई को भी बड़ी बदुआएं, भाई हरे को तो डिपोर्ट करते फिर रहे हैं ये लोग, उनको क्या होगा, और वहां पे बहुत ट्रैफिक जाम्स होते हैं जिस तरीके, वो बस अमीर लोगों के लिए एक शहर है, आम इंसान वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो खैर इसी बात पे मैं चलती हूँ, चाय भी आ चुकी है दोस्तों, तो अब मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन ये बहुत अच्छा गुजरेगा, आप बहुत तरीके से प्लान करके टाइम लाइन्स बना के कि इस घंटे में आपने क्या काम करने हैं, बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह ये दिन गुजारेंगे। एंड आई एम लीविंग यू विद दिस ट्रैक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
1: मैं जब 10 साल का था तो मैंने 9 o'clock न्यूज पे सुना कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है।
2: अबू!
3: मैं फिर 20 साल का हुआ, मैंने फिर 9 o'clock न्यूज पे सुना कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंकर हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
2: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM 100.
4: Come on.

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: 100 FM.
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: 100 FM.
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.
4: Back to back, only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is FM 100.
6: Come on.

0: असल तू मनी नहीं.
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 12 noon. This time check is brought to you by
1: Reno by JazzCash.
2: अभी JazzCash app download करो और Yellow के through payment करो.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जबकि आगाज हो चुका है तो सबसे पहले आपको बता देते हैं तरीका कार कि कैसे आप ही बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो बताएं भाई, कैसा गुजरा आप सबका छुट्टी का दिन? क्या कुछ किया आपने? कहीं गए, कहीं आए, या फिर बस आराम किया, और या फिर बहुत सारे काम पेंडिंग थे वो करे? बिकॉज उमूमन तौर पर संडे का दिन जो है वो मुझे लगता है कि आम दिनों से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क्स। वो काम भी करने होते हैं जो भाई पूरे हफ्ते पेंडिंग रह जाते हैं, और अक्सर होगा तो कई महीनों के काम भी ना अब संडे वाले दिन प्लान करके करे होते हैं कि चलो छुट्टी का दिन होगा तो सुकून से कर लेंगे। तो भाई या ये सूरत हाल रही या फिर इस गर्मी ने कोई काम करने के लायक आपको ना छोड़ा और आपने प्लान किया कि कोई भी काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आराम होगा। तो कैसा गुजरा आप सबका छुट्टी का दिन मंडे वाले दिन, ये हम लाजमी आपसे जानते हैं। तो हमें जरूर बताएं कि आप सबका छुट्टी का दिन कैसा रहा, कैसा गुजरा, क्या कुछ किया, आराम किया या खूब सारे काम किए। सो हाउज योर हॉलीडे, तो हमें जरूर बताएं भाई मैसेज करके कि आपका छुट्टी का दिन कैसा गुजरा है। जब तक आप हमें ये बात बता रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना जब तक एक अदद अब ब्रेक की जानब जाया जाए, आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन। तो चलें जी ब्रेक की जानब चलते हैं, वापस हम ट्रैक के साथ आते हैं और फिर मजीद बातें भी आपसे करेंगे, क्योंकि भाई बातें तो बहुत सारी हैं जो आपके साथ होने वाली हैं। तो इसलिए आपने देर नहीं करनी है, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाना है ताकि कोई भी बात जो है ना वो मिस ना हो। और गर्मी के हवाले से क्या ताजा तरीन सूरत हाल है, इस पर तो आज मैं प्रॉपर वर्क करके आई थी, यानी कि आज आपको बहुत सारी मालूमात मिलेगी कि ये पूरा हफ्ता जो है, जो कि आज शुरू हुआ है, आज से लेकर इख्तिताम पजीर होने तक इसमें क्या सूरत हाल रहेगी, किस दिन कितना दर्जा हरारत होगा, क्या कुछ होगा। तो भाई दिल थाम के बैठे, क्योंकि अभी हम इस पूरे हफ्ते के बारे में भी बात करेंगे कि गर्मी की क्या सूरत हाल रहेगी। तो यानी कि बातें तो भाई बहुत सारी हैं, तो जल्दी से आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं, जो भी काम करना है इसे फौरन से निपटा लें, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं वापस और वापस आएंगे हम ट्रैक के साथ। तो चलें जी शामिल करते हैं ब्रेक को।
1: कूल किंग, चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247।

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: यस माय फ्रेंड, सो आई एम बैक. और भाई गर्मी की तो मैं रिसर्च कर आई हूँ, बिल्कुल आपको तफसीलात दूंगी कि गर्मी की क्या सूरत हाल है, ये पूरा हफ्ता कैसे रहने वाला है. लेकिन मैं कह रही हूँ कि अभी रहने देते हैं, थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं. अभी आप लोग थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस करने की कोशिश करें, जो कि जरा मुश्किल भी है. बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है क्योंकि भाई गर्मी बहुत है कराची में. लेकिन हमेशा की तरह मेरा फिर ये कहना है कि पानी खूब ज्यादा पिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप कोई काम करें या ना करें, लेकिन पानी का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करें, बहुत सारा पानी पिए. क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो है पानी, यानी कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. तो उसको आपने पीना है बहुत ज्यादा. इसी के साथ साथ हमारे पास मैसेज आ चुका है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. हेलो, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ जी. कहते हैं आई एम गुड. यस, हॉट मौसम में दिन अच्छा गुजर रहा है. आपके इस खूबसूरत शो की जितनी तारीफ की जाए वो कम है. थैंक यू सो मच. कहते हैं मिक्स दाल है, छुट्टी के दिन नींद खूब पूरी की. आपके लंच में क्या है, पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा. रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी. अच्छा, कल मैंने भी वैसे छुट्टी के दिन अपनी नींद पूरी की, बल्कि मुझे तो इतनी नींद आ रही थी कल के, बस बार बार नींद आई जा रही थी. तो मैंने भी कल बहुत सारी अपनी नींद पूरी की और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि मुझे बहुत सारी नींद आ भी रही थी. सो यस, कल छुट्टी का दिन मैंने भी ऐसा गुजारा, अपनी नींद को पूरी की, कुछ काम निपटाने थे वो करे, ताकि ये हफ्ता जो है वो पीसफुली गुजरे. वैसे भी बाहर के चक्कर तो ऐसे होते हैं कि जो आपको लाजमी तौर पर आपके लगते ही लगते हैं. मतलब बाहर के चक्कर लगाए बगैर तो मतलब मुमकिन ही नहीं है ना कि आपका टाइम जो है वो गुजर जाए. तो बाहर के चक्कर तो कंपलसरी हैं, लेकिन यही मेरा पैगाम भी है आप लोगों के लिए कि अगर आपको कुछ चीजें खरीदनी है, शॉपिंग करनी है, कोई भी चीज आपको बाहर से खरीदनी है, तो मेक श्योर कि आप लोग जो है वो शाम 5 बजे के बाद जाएं, बिकॉज उस वक्त जरा धूप की शिद्दत में कमी हो जाती है, मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है, दर्जा हरारत में जो है वो थोड़ी कमी आ जाती है. बिकॉज इससे पहले दर्जा हरारत में बहुत इजाफा है और ये पूरा हफ्ता बहुत गर्म तरीन हफ्ता है. तो या तो काम आप पहले निपटा लें, या फिर आप ऐसा करें, एक तो आजकल ऑनलाइन की बड़ी आसानी, आप ये भी कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपने कामों को शाम में कर लें. लेकिन कोशिश करें कि दोपहर के औकात में बाहर ना निकलें, बिकॉज बहुत सारी गर्मी है और इस गर्मी से बचना इस वक्त हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो एहतियात करें, अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें. फिलहाल हम चलते हैं ट्रैक की जाने और आते हैं वापस हम ट्रैक के बाद. तो आपने कहीं नहीं जाना है, इस ट्रैक को एंजॉय करें. विल बी राइट बैक.

ऑल राइट जी, सो वी आर बैक और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी। और इसी के साथ साथ मैंने कहा कि जी हम वापस आ चुके हैं तो क्यों ना आप लोगों तक कुछ मालूमात भी फराम की जाए। सो HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ पाएं मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग, बेहतरीन मोबाइल ऐप। अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच।

Yes, everybody. So welcome back. This is me, Fatima Khan. मैं आ चुकी हूँ वापस. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हो चुके हैं हम दाखिल. आप लोगों से खूब सारी बातें हमने कर ली हैं, लेकिन स्टिल खूब सारी बातें बाकी हैं. प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ. तो बिल्कुल भाई, प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत तो आप जानते ही हैं कि एक अदर ट्रैक आपको डेडिकेट किया जाता है, और उसी के साथ साथ ये भी जाना जाता है कि आपके लंच में क्या है. तो भाई लंच में क्या है हमें जरूर बताएं. सबसे पहले मैं अपनी रिवायत को कायम करती हूँ, यानी कि एक अदर ट्रैक आपको डेडिकेट करती हूँ, और फिर आपको मौसम की तफसीली सूरत हाल बताते हैं कि भाई क्या ताजा तरीन सूरत हाल है मौसम की, ये पूरा हफ्ता कैसे गुजरने वाला है. जी हाँ, ये हफ्ता काफी गर्म तरीन गुजरने वाला है. हीट वेव की भी पेशन गोई है. सो तफसीलात क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक अदद रिवायत, यानी कि एक अदद ट्रैक आपके नाम, एंड देन विल बी राइट बैक.

तो संभल संभल के जिए तो खूब गुजरेगी जिंदगी अपनी, लेकिन जरूरी है कि जी आप संभल संभल के जिए और अपना भरपूर ख्याल रखें, जो कि बड़ा जरूरी है। हम अक्सर अवकात बहुत सारे लोगों का तो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, तो इसीलिए आपका अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो संभल संभल के जिए तो खूब गुजरेगी जिंदगी अपनी भी और आपकी भी। खैर जी, सो वी आर बैक और वापस आ चुके हैं। तो मैंने कहा भाई मौसम की ताज़ तरीन सूरत हाल आपको बताते हैं कि कराची में ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। तो कराची हाई हीट अलर्ट फ्रॉम दिस वीक। यस, कराची में रवा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के। शहर में जून का महीना अब दूसरा गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड किया जाता है। पिछले चंद सालों में देखा गया है कि जून के गैर मामूली तौर पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है। जून 2024 शहर में शदीद गर्म गुजरा था और रवा साल भी जून में गर्मी की शिद्दत मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को है। रवा हफ्ता शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, जबकि जुमरात से जुम्मे के दौरान शहर में हीट वेव जैसी कंडीशंस मुतवक्के हैं। शहर में रवा हफ्ता दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है, जबकि मजावाती इलाकों में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा सकता है। शहर में पीर से मंगल के दरमियान दर्जा हरारत 36-38 डिग्री के दरमियान रह सकता है, लेकिन जुमरात से हफ्ते के दरमियान दर्जा हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्के है और मुख्तलिफ इलाकों में 40 से 41 डिग्री तक बढ़ सकता है। शहर में इस दौरान मगरब से गर्म हवाएं भी चलने की तवक्को है। महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत भी मामूल से ज्यादा मुतवक्के है, जो कि शहर में हीट वेव जैसी कंडीशंस का सबब बन सकता है। लोगों से गुजारिश है कि गर्म मौसम में पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, गैर जरूरी तौर पर धूप में ज्यादा देर बाहर ना गुजारें, ना ज्यादा देर तक बाहर निकलें। मतलब जो टाइमिंग मैंने आपको कही है, प्लीज ट्राई टू अवॉइड कि उस टाइम में आप लोग बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस दर्जा हरारत जो टाइम इस वक्त चल रहा है और जो दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ रहा है, अल्लाह पाक इसमें रहम करे और बस हम लोग इस टाइम को गुजार लें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। सिंध के दीगर शहरों में गर्मी की शिद्दत में काफी हद तक इजाफा मुमकिन है और दर्जा हरारत 52 डिग्री तक बढ़ सकता है। ये हीट वेव सीजन की ताकतवर तरीन हीट वेव है, पूरे पाकिस्तान पर असरअंदाज हो सकती है। जी हाँ, तो यह है ताजा तरीन सूरत हाल, यानी कि आपने देखा कि यह पूरा हफ्ता जो है वो कराची के लिए बड़ा खतरनाक है। कराची नहीं बल्कि सिंध के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी। तो ये महीना तो वैसे आपने देखा कि अब गुज़श्ता सालों से रिकॉर्ड किया जा रहा है कि जून का महीना भी अब गर्म तरीन महीनों में से एक है, वरना गर्म तरीन महीनों में से मई का एक महीना होता था जो कि एक्चुअली गर्म होता था, लेकिन अब जून भी गर्म तरीन महीनों में से एक है। एक बार फिर आपको याद दहानी कराने के लिए बताते चलते हैं कि आज पीर है और आज दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत आज भी काफी ज्यादा है। किसी इलाके में 43 तो किसी इलाके में 42 रियल फील्स लाइक महसूस किया जा रहा है। ट्यूजडे भी ऐसे ही दर्जा हरारत का रहने का है। वेडनेसडे 37 से 39 तक, थर्सडे 39 से 42 तक, और उसी के बाद फ्राइडे 39 से 43, सैटरडे 38 से 40, संडे 37 से 39। जी हाँ, यानी कि इस दफा कराची में दर्जा हरारत जो एक्चुअली में है वो 43-44 तक भी जा सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत में कितना इजाफा होगा। तो बस अल्लाह पाक से यही गुजारिश है कि ये टाइम भी हम गुजार लें, और इसी के लिए आपको भी अपना ख्याल रखना है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, और एसपीएस के साथ साथ हम आपको कुछ एहतियात भी बताएंगे जो कि बड़ी जरूरी है, कुछ ऐसी चीजें जो कि आप महसूस कर रहे हैं तो उस दौरान आपने क्या करना है। फिलहाल ये था जी इस वीक की अपडेट कि इस वीक कितना दर्जा हरारत रहेगा, क्या सूरत हाल रहेगी। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको इस हवाले से मालूमात फराहम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर वापस आकर आपको मजीद मालूमात फराहम करेंगे कि कैसी अलामत पर आपने जो है वो एहतियात करना है। सो वो क्या अलामत हैं, इस पर भी हम आपको मालूमात फराहम करेंगे। उससे पहले एक अदर ट्रैक आपको सुनाते हैं, फिर वापस आकर आपसे मजीद बात करते हैं। लंच में क्या है जरूर बताएं हमें।

0: now.
1: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
0: Join Fatima Khan.
1: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's make your midday break a blast. Midday break a blast.
2: Cool King.
3: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
2: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
3: ये क्या है भाई?
2: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

स्वागत रहेगा। इस हवाले से तो हमने आप लोगों तक आगाही फराहम की है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और भी जरूरी बातें हैं जो हम आपको बताते रहेंगे, और इस गर्मी के टाइम में हम आपको फुली सपोर्ट करते रहेंगे, मालूमात भी फराहम करते रहेंगे, आपको याद दहानी भी कराते रहेंगे कि जी आपने पानी नहीं पिया है बहुत देर से, तो पानी भी ज्यादा से ज्यादा पिए। और बिल्कुल जी, इस वक्त आप पानी खुद भी ज्यादा से ज्यादा पिए, जानवरों का ख्याल रखें, परिंदों का ख्याल रखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिट्टी के बर्तनों में पानी या बाजरा डालते हैं, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश यह है कि प्लीज आप उस पानी को जरूर चेक कर लिया करें, बिकॉज जो गर्मी की सूरत हाल है उसमें वो पानी भी गर्म आग हो जाता है। और आप ये देखें कि इस वक्त जितनी पानी की जरूरत हम सबको है, प्यास लग रही है, गर्मी है, एग्जैक्टली उनके साथ भी है, और वो बेजुबान है, वो कह तो नहीं सकते, लेकिन इस चीज का भी आप ख्याल रखें कि जरा उस पानी को भी देखते रहें कि कहीं वो बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं, और अगर वो बहुत ज्यादा गर्म है तो उस पानी को तब्दील करते रहें ताकि वो भी बासानी पीते रहें और आपको इसका खूब अजर मिले। तो इस दौरान ये काम बहुत अच्छा है बिल्कुल। और ऐसे हीट वेव के कैंपेन्स भी लग जाते हैं जहां पर लोगों को पानी पिलाया जा रहा होता है, एंड आई मस्ट से कि ये बहुत ही जबरदस्त काम है और बहुत नेक काम है जो ये लोग ये करते हैं। और अच्छी बात है भाई, कराची में तो बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, और दीगर सिंध में भी इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी है, दीगर इलाकों में जैसे मैंने आपको बताया कि 52 तक जो है वो दर्जा हरारत टच कर जाएगा, ये अब तक का सबसे गर्म तरीन रिकॉर्ड किया जाने वाला दर्जा हरारत है। और सिर्फ सिंध और कराची में नहीं बल्कि इस दफा पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। तो सुपर रेनो का आप देख सकते हैं कि वो किस तरह लोगों को नहीं मतलब शहरों को मुतासर कर रहा है, तो यही सूरत हाल है। तो इसलिए आपने अपना भरपूर ख्याल रखना है, और क्या क्या अलामत हैं जिनको आपने नजरअंदाज नहीं करना है ये भी हम आपको बताएंगे। हमें मैसेज करती हैं जरीन नूर, कहती हैं सलाम, कैसी हैं, आज देर से शो सुना, लाइट नहीं थी। ओहो, चलो जी कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। आई विश के बगैर लाइट के आजकल गुजारा भी भाई बड़ा मुश्किल है, तो अल्लाह पाक हम लोगों पर रहम करे, एक तो गर्मी की शिद्दत में भी कमी हो और ऊपर से लोड शेडिंग का मसला जो है ये भी खत्म हो। एक तो गर्मी, ऊपर से लाइट नहीं, ओ माई गॉड, सच अ डिफिकल्ट टाइम। अच्छा जी, तो बात यह है कि क्या सच है कि धूप या हीट वेव से सर में दर्द, चक्कर, थकन, मसल क्रैम्स और दिल की धड़कन तेज होना डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रेस की निशानी हो सकती है? बिल्कुल जी, ये निशानी हो सकती है। बहुत ज्यादा पसीना निकलने से सिर्फ पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम और पोटेशियम की भी कमी हो सकती है, जिससे क्रैम्स और वीकनेस हो सकती है। अगर हीट स्ट्रेस को इग्नोर किया जाए तो जी हाँ, ये काफी केसेस में इजाफा कर सकती है, और इसी के साथ साथ ये हीट स्ट्रोक तक ले जा सकती है जो कि इमरजेंसी होती है। प्यास वाली बात की जाए तो ये बात काफी हद तक सच है। रिसर्च के मुताबिक कि जब आपको प्यास महसूस होती है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो चुकी होती है। 1-2% जो है वो बॉडी वाटर लॉस वाली फिगर कॉमनली कोट की जाती है, लेकिन हर शख्स में ये एग्जैक्ट परसेंटेज जरा मुख्तलिफ होती है। इस दौरान यानी कि यही कहना है कि जी आपने पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, पानी पिए, ओआरएस पिए, हल्के कपड़े पहने, ठंडी जगह पर थोड़ी देर आराम करें, ये भी बहुत जरूरी है, ठंडी ठंडी पट्टियां रखें। और अगर इस शदीद गर्मी के दौरान आपको जो है वो बुखार महसूस हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, तो ये एक इमरजेंसी है, तो आपने फौरन मेडिकल हेल्प लेनी है, जैसे कि कंफ्यूजन होना, बेहोशी होना, या फिर आपको इस शदीद गर्मी में तेज बुखार होना, तो ये सिम्टम्स जो हैं इन्हें हरगिज इग्नोर ना करें, बल्कि जल्द अज जल्द आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसे आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अच्छा भाई, एक्सेस कैफीन और शुगरी ड्रिंक्स हाइड्रेशन में मदद कम और कुछ लोगों में डिहाइड्रेशन बढ़ा सकती हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि जैसे कि गर्मी का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इस दौरान लोग क्या करते हैं कि जी गर्मी बहुत है तो कुछ पानी पीना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि लिक्विड इनटेक ज्यादा करना है, तो लोग शुगरी ड्रिंक्स ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, फिजी ड्रिंक्स ले लेते हैं, तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि इससे जो है वो हाइड्रेशन में कोई मदद नहीं होती बल्कि डिहाइड्रेशन बढ़ सकती है। तो इस चीज का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए या नींबू पानी पिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, ओआरएस पिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज है। खास तौर पर पानी कम पिया जा रहा हो और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो ये भी मसले का सबब बन सकती है। सो इन चीजों का ख्याल रखें, और इसमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको महसूस हो रहा है तो ये मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। So basically we can say this weather is dangerous. So you have to take care of yourself. और जहां तक बात dangerous की है तो ऐसा कोई ट्रैक है नहीं, वैसे ऐसा ट्रैक बनना चाहिए जो गर्मी से रिलेट करता हो, ताकि हम गर्मी का जब जिक्र कर रहे हो तो कोई ऐसा भी ट्रैक शामिल होना चाहिए भाई, बारिश पे है, हर मौसम पर ऑलमोस्ट गाना है, लेकिन गर्मी पे कोई गाना नहीं है। लेकिन अभी जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये वेदर जरा डेंजरस है, सो आपने अपना ख्याल रखना है, तो मुझे एक ट्रैक मिल चुका है माइकल जैक्सन का डेंजरस, तो उसे हम शामिल करते हैं, बिकॉज एक्चुअली में दिस वेदर इज डेंजरस।

0: यस एवरीबॉडी, सो ये मौसम कितना डेंजरस है, तो मैंने कहा चलो जी इसी से रिलेट करता है एक ट्रैक आपको सुनाते हैं ताकि आपको भी अंदाजा हो कि दिस वेदर इज रियली सो डेंजरस। तो यानी कि भाई कोई मसले की बात नहीं है, आप अपना ख्याल रखें, जो कि एहतियात आपको हमने बताई है वो आपने करनी है कि जी हाँ हल्के कपड़े पहने, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, डार्क कलर्स अवॉइड करें, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। लिक्विड इनटेक ज्यादा करनी है, लेकिन मेक श्योर कि आपने शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेनी है क्योंकि वो जो है वो डिहाइड्रेशन का सबब बन सकती है और इससे आपको ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। सो इन चीजों को आप अवॉइड करें, ठंडी जगह पर कुछ देर आराम करें और ठंडी पट्टियां लगाएं। ये सारी चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ये वक्त भी आसानी से गुजर जाएगा। सो नथिंग इज टू वरी, बस ये है कि हर चीज की कोई ना कोई एहतियात होती है, ख्याल होता है, वो आपने रखना है क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। अच्छा भाई, तो जरी नूर ने अपना लंच भी हमसे शेयर कर लिया है, कहती हैं आज खाने में आलू गोश्त और बॉयल चावल हैं। वेरी गुड, दैट इज सो नाइस भाई। आलू गोश्त तो सबका द मोस्ट फेवरेट वाली चीज होती है, तो आलू गोश्त तो जब भी बनता है तो एक खुशी होती है, या फिर आपको आलू गोश्त की अक्सर औकात क्रेविंग भी होती है कि चलो जी आलू गोश्त और चावल बना लेते हैं, वो बड़े मजे के लगते हैं, या फिर अगर चावल नहीं तो आलू गोश्त और गरम गरम नान इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो वैसे भी ये कोशिश करें कि ये जो हफ्ता है, क्योंकि गर्म तरीन हफ्ता है, हीट वेव की भी पेशेंट वही है इस हफ्ते में, जुमरात और जुम्मे वाले दिन, सो मेक श्योर कि आप जो है वो खाना हल्का फुल्का खाएं, सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें, कम तेल में से पकाएं, ये भी बहुत जरूरी है ताकि जो उसका न्यूट्रिशनस है वो ना जाया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अक्सर औकात हमारे डॉक्टर्स आते हैं तो वो कहते हैं कि सब्जियां हम खा तो रहे हैं लेकिन उसे इतना पका रहे हैं कि उसके फवायद जो है वो गायब हो रहे हैं। सो बिल्कुल आप सब्जी पकाएं, ये बहुत जरूरी है, फल खाएं, ये बहुत जरूरी है, गोश्त को जरा कम मिकदार में खाएं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अभी बारबेक्यू शारबेक्यू के प्लान जो है मुझे लगता है कि इस हफ्ते तो कैंसिल कर दें, अगर कोई भी प्लान आपने बनाया है तो अनकरीबी दिनों में रख लें, लेकिन इस वीक अवॉइड करें कि ज्यादा हैवी इनटेक ना हो, ये एक बहुत जरूरी चीज है। सब्जियां खाएं, फल खाएं और नींबू पानी पिए, पानी पिए, ये सारी चीजों का आप ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ये हफ्ता बहुत अच्छे से और आराम से गुजर ही जाएगा। और लो भाई इतनी सारी बातें कर ली, ब्रेक मौजूद है तो चलते हैं ब्रेक की जाने, और आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
2: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
3: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

Yes, everybody. So, इस कम वक्त में भी मैंने कहा कि चलो जी एक अदर ट्रैक को शामिल कर लेते हैं. गर्मी बहुत है तो आपके मूड का रखते हैं ख्याल ताकि आप रहें हंसते मुस्कुराते खुश. और भाई इस गर्मी में गुस्सा भी बहुत आता है तो कोशिश करें कि इस गुस्से पर पालें काबू क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही है. तो गर्मी भाई आपको ही नहीं लग रही सामने वाले को भी लग रही है. सो मेक श्योर कि जरा काबू पाएं अपने गुस्से पर क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं. सो रिलैक्स करें कूल एंड काम रहें ताकि आपको गुस्सा जो है वो कम आए और गुस्सा कम आएगा तो आपका काम अच्छे से रहेगा और दिन भी अच्छे से गुजरेगा. तो गुस्से पे आपने पाना है काबू रखना है अपना भरपूर ख्याल और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें. खुद भी पानी पिएं और दूसरों को भी पिलाएं. और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत. मुलाकात होगी आपसे कल. अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.

0: It's 2 p.m. The time check is brought to you by
1: Reno by JazzCash.
2: अभी JazzCash app download करो और Yellow के through payment करो. 1, 2, 3 Yellow. 1, 2, 3 Yellow.
3: ये क्या है भाई?
2: 1. Jacket, shoes हो या watch, जो चाहे select करो. 2. JazzCash पर Yellow से payment करो. और 3. येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय JazzCash.
2: अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
0: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365.
4: कुदरत का निजाम तवाज़न पर कायम है.
5: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़न बिगड़ जाता है.
6: घर के अफराद और आमदन में तवाज़न
7: हमारी जिम्मेदारी है.
8: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
10: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.

0: King.
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग.
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
2: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो.
3: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
5: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.

0: Hong Kong.
1: Hmm? बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात। लेकिन बीपी हाई।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर

0: HBO Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO Freedom Account, जहां खार, वहां HBO.
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery, दिल को है आराम,
3: and Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता एसी.
4: And Dettol Cool Soap, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
0: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
4: And जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
1: And
4: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
1: And
6: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
1: And
7: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
8: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
9: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
10: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
2: 100 FM.
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
2: 100 FM.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
2: 100 FM.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
0: This program is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and
6: Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and
7: Dettol Cool Soap, Ye Baddu Phailane Wale Germs Ko Dur Bhagaye,
0: and
1: HBL Freedom Account, Jahan Khab वहाँ HBL.
0: एंड
8: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: एंड
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
0: एंड
7: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: एंड
9: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: एंड
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
0: Like us on facebook.com/fm247365.
10: fm247365.
11: Back to back, back to back, only music, no RJ talk.
12: Only music, no RJ talk.
11: This is FM.

रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: से हाथ उठाना।
1: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
2: देख के नहीं चलाता क्या?
3: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
4: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
6: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
7: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
8: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से जायद इनामात।
7: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
9: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
10: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
11: ये क्या है भाई?
12: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज़ कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
13: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैज़ कैश।
12: अभी जैज़ कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
2: Cool King. बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग.
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहाँ HBL.
5: 100 FM.
6: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: 100 FM.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: AGS ट्यूबलेट. दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम.
3: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
0: And
8: Dettol Cool Soap, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
1: And HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहाँ HBL.
9: And अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
1: And
10: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
1: And
11: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
1: And
12: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
1: And दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
0: And
13: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
0: And
14: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: आने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
1: एंड HBL फ्री रमकम, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
1: एंड
0: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
1: एंड
3: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
1: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
1: एंड
5: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
1: एंड
6: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
1: एंड
7: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
8: FM247365.

0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खा वहां HBL.
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery, दिल को है आराम,
3: and Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता AC,
4: and Dettol Filter, ये

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
1: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
0: Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: Cool King.
3: Bijli ka bill dekha. Aankhon ne double check kiya. Phir bhi shock same. Isi baat. Lekin BP high.
4: Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
1: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
0: Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
5: 100 FM.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
1: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
0: HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
5: 100 FM.
6: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंकर हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: 100 FM.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब, वहां HBL.
7: This program is brought to you by
8: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and
9: Dettol Filter, Ye Badu Phailane Wale Germs Ko Dur Bhagaye,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, वहाँ HBL.
10: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: एंड
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ले लो बाय जस्ट कैश.
0: एंड
9: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: एंड
11: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: एंड
1: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
0: एंड
1: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
0: एंड
12: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
5: 100 FM.
13: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
14: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. 7365.

खुद से भी मिला करें, सर उठा के चला करें। खुदा के तरीके हम नहीं समझ सकते, हम उससे क्या गिला करें। दुनिया संग दिल बनती मेरी दुश्मन, हम कम अज कम खुद से ही सुला करें। कम बोला करें, ज्यादा सुना करें, रब देता है माफी फिर गुनाह करें। ये ताकत ठिकाने बदल सकती, कलम की ताकत आफत भी पलट देती। लिखारी जान लेवा हूँ पर लिखाई हीरोज अब जीने का सबक देती, वरना जिंदगी मौके तो कम देती। महफिलों में तो रौनक भी हमसे थी, इधर हसल करते करते पूरा दिन गया। उर्दू रैप मैं, उर्दू रैप मेरे दिन क्या। फैक्स नहीं, फ्लैक्स नहीं, मुझे गालिब जैसा लिखने का।

मेरे पर फिर भी जाने कैसे उड़ते, मुझे उड़ने दे, टूटे जो दिल वो आज जुड़ने दे, इन आंखों को खुशियों से भरने दे, अल्फाज मेरे दिल में उतरने दे, मंजिल तो खुश हो ठहरने दे, ये घर मेरा जड़ को ना मरने दे, उभरेंगे सूरज ये ढलने दे, वक्त लगे खुद को बदलने में।

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
2: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And
3: Dettol Cool Soap. Ye badbu phailane wale germs ko dur bhagaye.
0: And
4: HBL Freedom Account. Jahan khwab. वहाँ HBL.
0: And
5: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
3: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश.
0: And
3: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: And
6: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
7: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का.
4: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
8: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
9: Cool King.
10: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
11: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
12: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
13: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉब सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉब सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
8: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL.
14: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500.
5: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें. प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
14: एक दुनी दो दो दुनी चार
15: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
7: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी. बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का.
16: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो.
17: ये क्या है भाई?
16: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो. और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो. ये लो बाय जैस कैश.
16: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो.
7: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी. बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
2: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
5: FM247365
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: जिसमें हिस्सा लें, प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिफ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज़ कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैज़ कैश।
3: अभी जैज़ कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: किसने कहा था पैसा?

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। पातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिजा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
5: facebook.com/FM247365 FM247365

0: This is FM 100.
1: Come on.
2: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: This program was brought to you by
4: Tufaan hai har jeet ki pehchaan hai
2: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
5: ek do teen yellow ek do teen yellow
6: ye kya hai bhai
5: ek jacket shoes ho ya watch जो चाहे सेलेक्ट करो दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
7: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैस कैश
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
2: FM247365
8: FM247365 FM100
2: 31 साल FM100 आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
8: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पाकिस्तान

is facebook.com/FM247365. FM247365.

0: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: FM 24/7 365 FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے،

0: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 24/7 365

हेलो माइक चेक 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है, कैसे मिजाज है और कैसी तबीयत है? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, फिट फाट होंगे। सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो चैनल FM 100। और जनाब मैसेज आप लोग करते हैं क्या? स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636। थोड़ा सा लेट, ट्रैफिक जरा ज्यादा था और मैं भी जरा सुकून से। यार आज गर्मी कुछ ज्यादा है भाई, गाड़ी में स्टूडियो में तो पता नहीं लग रहा, लेकिन यार बाहर जब आप काम के लिए उतरते हैं जाते हैं तो लग पता जाता है इतनी गर्मी। और सुनाए दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। मंडे का दिन, पुराने गाने, पुरानी यादें, आपका मेरा साथ 9 बजे से लेके 11 बजे तक रहता है और कोशिश करते रहते हैं कि हिट गाने जो है वो आपको मैं सुनाता रहूं। और कोशिश ये भी है वो गाने भी सुनाऊं जो कभी ऑन एयर नहीं हो पा रहे। हालांकि पाकिस्तानी फिल्मों के इतने गाने हैं, मुझे लगता है अभी हमने कुछ भी प्ले नहीं की, या फिर मेरी लिसनिंग इतनी फारिग है। पाकिस्तानी फिल्मी गाने बेतहाशा गाने। इतना मैसेजेस क्या है, व्हाट्सएप पर भी आना शुरू हो गए, इसके अलावा मैसेंजर पर भी और 3636 पर। आवाज करेंगे मैडम जी की आवाज से, और क्या ही खूबसूरत गाना मुझे नजर आ रहा है।

0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
2: ये क्या है भाई?
1: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
4: On facebook.com/fm247365 fm247365
5: active
6: yummy
5: adorable seven
7: say I've got a crush on you
8: kya pyaas to suno yaar

भाई जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे हैं फिर 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर। आयशा हारिस हमें मैसेज कर रही हैं। आयशा हारिस जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? कैसे हैं आप आयात? मैं आयशा जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। प्रोग्राम सुनती रहती हूँ और मैसेज में सुस्ती कर जाती हूँ। चले कोई बात नहीं जनाब, आगे इतनी सारी दुआएं लिख दी आपने, अरे बड़े आप भी खुश रहे। आप जो जो आपने मेरे लिए लिखा है वो सारा आपके लिए। सब सुनने वालों को सलाम, कीप इट अप भी कह दिया। चले जनाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आयशा हारिस जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम भी मैसेज करते रहिएगा ताकि पता चलता रहे कि आप हमें सुन रही होती हैं। इसके अलावा मुश्क लैला, मामा नाम मैं सही पढ़ रहा हूँ, मुश्क लैला कह रही है अस्सलाम वालेकुम अयाज, वेलकम, फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, सुनती रहती थी, फेवरेट आरजे हैं। अरे वाह वाह वाह, अच्छा नाम बताइए, मैं सही पढ़ रहा हूँ, मुश्क लैला क्या है? ऐसे ही है ना? क्या ये रियल नेम है आपका? इस बारे में जरा मुझे बताइएगा, और ये मतलब क्या है, मुश्क क्या है? इश्क मुश्क तो सुना था मैंने। अच्छा जनाब, और संजीदा जी के क्या हाल हैं? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, प्यार से मोहब्बत से वेलकम करती हैं आप। और पहला गाना भी इनको पसंद आ गया। नसरीन जी को यकीन नहीं आ रहा आप आ गए। मैं माजरा चाहता हूँ, थोड़ा सा शूट था आज और जरा मैं बिजी था उसमें, तो बस जरा लेट फ्री हुआ और फौरन मैं इधर आ गया। आपकी वीडियो देखी है AI की, बहुत आला। बल जनाब आतिफ अब्बासी हमारे बड़े प्यारे से दोस्त।

प्यारे से दोस्त, बहुत अच्छे एडिटर, बड़े अरसे उन्होंने जियो में भी काम किया और भी वैसे बहुत जगहों पे, तो इतनी मोहब्बत से उन्होंने बना के भेजी। आतिफ अब्बासी का थैंक्स करना चाहिए हमें। और मिसेस फारूक, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। इतनी सारी दुआएं आप भी भेज देती, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसी बात पर ये खूबसूरत सी गजल जो है ना, आपको डेडिकेट करता हूं मैं।

इतनी टैलेंटेड खातून थी, इनकी ड्रेसिंग मुझे बड़ी पसंद थी, मैं इनके ब्लैक एंड व्हाइट वाले वो गाने मैंने देखे, क्या खूबसूरत अंदाज, क्या स्टाइल इनका, खत्म, कॉन्फिडेंस लेवल हाई। इकबाल बानो जी जिंदाबाद, छा गई। और इतने मुश्किल मुश्किल गाने इन्होंने गाए हुए हैं, एक उतनी गजलें बड़ी सिंपल सिंपल सी होती, बंदा गा लेता है, ये जो गजलें हैं क्या खूबसूरत स्टाइल है। अच्छा जी, काशिफ अंसारी कहने अस्सलाम वालेकुम भाई, एक सॉन्ग है, बहुत अच्छा सिंगर है मसूद राणा की, जितनी तारीफ करने कम है, लेकिन रिक्वेस्ट क्यों नहीं है ना मेरे भाई, नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में ठीक हो गया। अच्छा जनाब, और संजीदा क्या कह रही है, वाह दागे दिल याद आने, इनको भी पसंद आ गया भैया, कह रही जहन में नाम नहीं आ रहा था इकबाल बानो का, जहन में मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा भैया, टेंशन मा का। और मिसेस फारूक कह रही है थैंक्स, इतनी खूबसूरत गजल जो है वो प्ले करती है। मिसेस फारूक मुझे आपके टेस्ट का अंदाजा है। अच्छा जनाब, और इसके अलावा अब्दुल गफ्फार मेहरान टाउन से, अयाज भाई कैसे हो, फर्स्ट SMS है, ग्रेट शो होता है, नाइस गजल भाई। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मुश्क लैला कह रही है कि बिल्कुल सही नाम ले रहे हैं आप, मुश्क एक खुशबू है और लैला का मतलब है प्यार, खुशबू से प्यार, इतना रोमांटिक चल रही हो तुम तो, फुल टाइम कंट्रोल करो, तो इतना रोमांस चल रहा भाई, लेकिन मेरा बहुत जबरदस्त जबरदस्त अच्छा नाम। अच्छा, मैं नेक्स्ट ट्रैक की जाने, और जनाब मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर।

क्या बात है जनाब, क्या बात है यार, ये इन खातून का मैं बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। इकबाल बानो इनका नाम है यार, इतना टैलेंट यार।

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें। मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: जनाब वेलकम बैक। सुन रहे हैं FM 100। काशिफ अंसारी मैसेज कर रहे हैं, भाई मैंने आपको सॉन्ग बताया है नेक्स्ट शो में प्ले। कितना प्यारा आदमी है काशिफ, तो कितना मासूम और प्यारा लगा मुझे, और आपकी प्लेलिस्ट बेहतरीन होती है। बस ये देखिए कितना, ये ऐसे भी लोग हैं, ये आपने बात अच्छी किया। मैं क्यूशीट बनाऊंगा ना तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो होगा, बस फिक्र ना करें। कादरपक्ष बलोच कह रहे हैं, याज भाई आपको और सब सुनने वालों को सलाम, कैसे हैं आप? याज भाई आप वीक में एक दिन और ऑन एयर। देखो ये कुछ समय ज्यादा बोल गया तुम, ऐसा नहीं करो यार, एक दो दिन मैं छुट्टी कर लेता हूँ, बाकी दिन तो मैं आता हूँ यार। जैसे आज आ गया, कल भी इंशाल्लाह, देखो एक दो दिन बीच में जरा छुट्टी हो जाती है। बांट रहा था जब खुदा भाई, फेवरेट गाने हैं भाई ये वाले। रयासुद्दीन बलबन वालेकुम सलाम, सबको सलाम कह रहे हैं और ये गाना पसंद आ गया। छाए हुए तुम यार, हर जगह छाए हुए तुम। अच्छा जी, और इसके अलावा बांट रहा था, ये पसंद आ गया संजीदा को। अस्मा के कल से बिजली बाजी नहीं थी, शो भी नहीं, कोई ऐसी बात? अच्छा जनाब, मुश्क जी क्या फरमा रही है? मुश्क जी कह रही है आपकी के इसी अंदाज पर मैसेज करने पर राजी हो गई। यार नहीं करो यार, नहीं करो यार, इसी बात पे ये गाना।

0: Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end. Oh, so loud.
1: Janab, welcome back. Sun rahe FM 100 aur Mrs. Farooq, bahut shukriya. Most welcome. Gana pasand aa gaya bhai ko ye wala. अच्�ा यार, ये इतना अच्छा टैलेंट था, ये जो पाकिस्तान आइडल जो स्टार्ट हुआ था यार, देखो ये भी मिसमैनेजमेंट और कुछ अजीब चक्रों में भी जाया हो गया। ये कितना टैलेंट आपको सुनने को मिल रहा था, देखने को मिल रहा था, किसी चीज पर भी हमारी गिरफ्त नहीं है। तो पड़ोस में देखे, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें वो कर रहे हैं, हमें लड़ने झगड़ने इससे ही फुर्सत नहीं मिल रही भैया, इन चीजों पे तवज्जो ही नहीं दे रहा। यंग टैलेंट बेचारा इधर से उधर घूम रहा है। कितना टैलेंटेड, कितने टैलेंटेड बच्चे थे, सीरियसली मेरे बड़े फेवरेट। मैं पता कर रहा हूँ, जरा किसी को मिल जाए तो इनको इनको यहाँ एफएम 100 बुलाऊं। लेकिन इनके साथ हुआ क्या, फाइनल भी नहीं हुआ। बेचारे वो सेट वाले ढूंढते यार हमारे पैसे का। ये अजीब पाकिस्तान में मसला है, पैसे का अजीब मसला, पैसे खा गए। हालांकि जो लोग इसको कर रहे थे बहुत ही टैलेंटेड, मैं लोगों को भी जानता हूँ और बहुत ही प्रोफेशनल। नदीम जे भाई का मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा, कमाल आदमी यार। और आपने उनकी प्रोडक्शन तो देख ही ली, क्या सेट, क्या क्या कहने। लेकिन प्रोड्यूसर ही फारिक मिले या पीछे कोई सियासत है, ये वो इन्हीं से नहीं निकल रहा। जब ये चीजें खत्म होगी ना तो जनाब काम होगा फिट किस्म का। नहीं मैं वहां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नईम भाई, की हाल है तुहाडा, ठीक हो? ओए होए, नदीम काजमी भाई ने क्या एक खूबसूरत शेर अभी अपने वालदैन के लिए उन्होंने लिखा है, उनके जाने के बाद, उनकी बरसी के मौके पे। कह रहे हैं कि क्यों ना बेफिक्र हो के सोया जाए, अभी क्यों ना बेफिक्र हो के सोया जाए, अब बचा ही क्या है जिसे खोया जाए। भाई वाह वाह वाह, कॉस्मिक छा गए हो। बाकी हकीकत में यार बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी बात की, मैं भी जरा संभाल के रख लेता। वालदैन के जाने के बाद बाकी कुछ ऐसी कोई पीछे क्या ऐसी कीमती चीज बच गई, हकीकत है। सलाम, कैसे हो? मैं समझिए आप आए नहीं, शुक्र आ गए। थोड़ा सा लेट भी बंदा हो जाता है, किसी दिन रश हो ये हो, थोड़ा सा बंदा बीच में चेक करते रहना चाहिए। अच्छा जी, अली हसनैन फ्रॉम इस्लामाबाद। अयाज भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड। कराची से मौसम कैसा? बहुत तबाही, खत्म, बिल्कुल गर्मी शदीद वाली। हाँ जी, अजरी नूर का था ये मैसेज पिछला वाला। तो अली हसनैन, बहुत शदीद गर्मी, बहुत ही, और आज इतनी प्यास लग रही है, पानी की बोतलें मैं तो साथ ले आया हूँ। अच्छा जी, अब्दुल गफ्फार के भी मैसेज आ गए। अयाज भाई, सॉन्ग सुनता हूँ, मेरा वक्त बहार जैसा हो जाता है। आए क्या बात है अब्दुल गफ्फार, अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा। अच्छा जनाब, शादियों का सीजन शुरू हो गया भैया, और लोग मुझे कह रहे हैं शादी के गाने भी लगाएं। तो एक शादी का गाना, बहुत ही पुराना ये, लेकिन मुझे नजर आया बचपन में कहीं, मैंने सुना था ये बहुत पहले, तो आज क्यू शीट में मैंने शामिल किया। जरा चेक करें आप।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up. Let the music begin.
1: FM 100's where the vibes are proud.
2: FM 100's time check. It's 10 p.m.
3: एक दो तीन येलो एक दो तीन येलो
4: ये क्या है भाई
3: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करो तो क्या समझी
5: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैस कैश
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
6: FM247365 FM247365 FM100
2: 31 साल FM100 आपकी आवाज अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान
6: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान पाकिस्तान
0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.

जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर भी। अच्छा जनाब, आज काफी दिनों के बाद आपका शो सुन रही हूँ, काफी नया नया लग रहा है, आपकी आवाज में तो दिन ब दिन एक नया निखार आता जा रहा है। बस ड्रिपे लगवाई हुई ताकि जरा एनर्जी रहे मेरी आवाज में। बड़ी मेहरबानी नौरीन तौसीफ का फैसलाबाद से, ये जो है वो मैसेज आ गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा शादो आए, कितनी दुआएं देती हैं आप नौरीन जी, बस बहुत स्वीट है। अयाज भाई, कल मेरी बर्थडे है, मुझे अच्छी अच्छी दुआओं से विश कीजिए भाई। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, सबसे बड़ी दौलत और सबसे अहम चीज हेल्थ है, सेहत अच्छी होनी चाहिए नौरीन जी। नेक्स्ट गाना आपके लिए स्पेशली, और हैप्पी बर्थडे, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा, इसके अलावा सलाम दुआ भी के दिए संजो बहना को, नसरीन को, मुश्की तो वो हो जाएगी, पानी वाली नहीं होती, मुश्क कहेंगे। अच्छा, जरीन नूर को खुसूसी सलाम को, अच्छा सा सॉन्ग, ठीक हो गया जनाब सबको, जो मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ वही गाना उनको भी, ठीक हो गया। अच्छा जी, न्याज बहादुर आ गए, ओ न्याज कितने हो तुसी। अयाज भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम। मेरी तरफ से अयूब भाई और महानूर को सलाम। अयूब भाई, किधर हो तुम यार, गायब हो आजकल यार, पता नहीं चल रहा, और पता चल रहा है तो सत्तार भाई का, क्योंकि शिफ्ट चेंज हो गई है। सत्तार भाई अस्सलाम वालेकुम, और इससे पहले नदीम अंसारी हमारे प्यारे से इंजीनियर, प्यारी सी छोटी सी हमारी टीम पाली सी। अच्छा जी, उमेर रुबाब कितने तुसी, आपको और सुनने वालों को सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बिलावल गिजरी से अयाज भाई, आपको और तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? हाल मेरे बिल्कुल ठीक है, आप बताइए मिजाज कैसे हैं और दिन कैसा गुजरा? मैंने बता दिया, थोड़ा सा मसरूफ, थोड़ा सा बिजी, और गर्मी ने ना जरा अजीब सा, बाहर निकलो, बाहर निकलने को दिल ही नहीं कर रहा, अजीब माहौल हो गया ये कराची में, कुछ अजीब सी गर्मी है, समुद्र की वजह से ह्यूमिडिटी इतनी शदीद वाली, पसीने आए चले जा रहे हैं, बराबर में कोई आके बैठ जाए उल्टी आने से बस, ओए होए होए, और जैसे ही वो हाथ उठाए बंदा बेहोश वहीं। तो जब भी नहाए धोए भाई दोस्तों, अपना ख्याल रखा करो, बगलों में जो है ना आपने वो डेंड्रफ क्या होती है वो खुशबू वाले, हाँ, और रोलर जो होते हैं वो आपने खुदा का वास्ता वो लगाओ, वरना तो हम इर्द गिर्द के लोग बेहोश हो जाएंगे। अच्छा, इन चीजों पे तो हमने कभी तवज्जो जिंदगी में नहीं दी ना, हराम है ये तो औरतें लगाएंगी, अबे भाई बंदों का भी काम है यार, यूं हाथ उठा नहीं और बराबर वाला बेहोश हुआ नहीं, ओए ओए भाई, होती है नेचुरल चीज है, इसमें कोई परेशान घबराने की। दूसरा, नहाना इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिसको हमने इजी लिया हुआ, अबे हफ्ता पे ईद गुजरी है अभी तो नहाया हूं मैं भाई, रोज नहाना चाहिए यार, क्या कहूं मैं इस बात, ज्यादा नहीं कहता खाम खबर, लेकिन जब सफाई का ख्याल, ये पाकिस्तानियों में बिल्कुल नहीं है, मेजोरिटी लोग देखे। एक हमारा अभी दोस्त वहां से आया है इस्तांबुल से, कह रहा है यार जिस बंदे को देखो बराबर से गुजर रहा, ऐसी खुशबू आ रही है, ड्रेसिंग कमाल, खूबसूरत ड्रेसिंग, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन, पूरा शहर जो है ना ऐसा लग रहा है मॉडल और वो घूम रहे हैं, जिसको देखो वो हीरो लग रहा है, कोई हीरोइन लग रही है, इसलिए बेचारा लेट भी आया थोड़ा, उन्होंने बाहरी कुर्सी डाल दी, उन्होंने कहा यहीं बैठ के यही नजारे लेते रहूं, पाकिस्तानी छोटी छोटी चीजों पर कुछ हो जाता, और अपने यहाँ बाहर निकलो उसी स्पीड से वापस अंदर आ जाता है, इतना मैला कपड़ों में से ऐसी बदबू, बस पे आप चढ़ जाए किसी पब्लिक सर्विस बस पे, ट्रेन पे चढ़ जाओ आप, अमामी में घुस जाए, सर मैं आप कह रहा हूँ जो इकोनॉमी क्लास होती है उसमें आप बैठ जाए, उल्टी ना आए तो मेरा नाम बदल लीजिए, इतना गंदे, और गुसल खाने वॉशरूम पब्लिक वाले, हाय हाय हाय, कहां तक मैं समझाऊं, ऐसे गुसलखाने क्या होता है वो बेहोशी वाले, जो दवाई खत्म हो जाए वहां पे मरीज को ले जाओ, सिर्फ एक दफा सर अंदर करना है आपने गुसलखाने में, 100 साल तक बेहोश हो जाएगा, कुछ पता नहीं मौत भी वाकई हो जाए, कितनी अजीब सी माहौल होता है। लेकिन बहरहाल मैं यहीं पे एंड करता हूं, नेक्स्ट गाने की तरफ बढ़ते हैं भाई, जज्बाती हो गया फुल टाइम।

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: Right, Janab, welcome back to Sunray FM 100. Hi. संजीदा जी क्या बात, खाना खाने थी कह रही किस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दी, लेकिन बात सही है और मिसेस फारूक भी कह रही बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी है। और ये हुई ना बात पायल में गीत छन छन कूल कूल ठंडा ठंडा माहौल हो गया, चलो अच्छा हो गया ये तो बगैर एसी के। सलाम अयाज इखलाक अहमद का सॉन्ग सुनाए, चांदनी चांदी ना महल सोना ना चांदी कोई, अच्छा अच्छा अश्विन जी देखे रिक्वेस्ट सुनी, नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में सुना देंगे आपको। बिलावल गिजरी से, सर आज आप बहुत गुस्से में लग रहे हो, प्लीज कूल डाउन। अरे मैं कूल डाउन हूँ सरकार, कूल डाउन हूँ बिल्कुल, बस गर्मी इतनी है ना इस वजह से ये माहौल है। और जो मेरे पे बीती है ना वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शूटिंग में जाए ना आप तो ये बेचारे यार उनका कसूर भी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं ना उनको, तो बड़े प्यार से मेरा प्यार का मेरा यही अंदाज है, अगले को गुस्सा लगता है लेकिन मैं हूँ अंदर से प्यार से, तो मैं समझा रहा हूँ प्यार से, यार साफ सुथरे रहो यार और अच्छे साफ सुथरे रहोगे तो आप भी फ्रेश फील करोगे, जैसे इस वक्त मैं कर रहा हूँ। दिन में नहाना जरा दो दफा रख लो, गर्मी है ना जरा सुबह सुबह बंदा वैसे ही, और जब मगरिब का टाइम होता है इस टाइम पे भी आप जरा वजू वजू करने गए हैं, मगरिब की नमाज पढ़ने गए हैं तो जरा साथ में एक हल्का सा बात, तो दिन भर की जो थकान जो पसीने हैं वो सारे, और साथ में थोड़ी सी डिओड्रेंट जरा खुशबू खुशबू तो बड़ा अच्छा कूल लगता है, आपका खुद बड़ी फ्रेशनेस फील आ रही है, जैसे मुझे आ रही, मैं जरा ऐसी अपनी तरफ से बैठा हूँ, माशाल्लाह स्टूडियो भी हमारा ऐसा जबरदस्त ठंडा ठंडा, तो मैं चाहता हूँ सारा पाकिस्तान ऐसे हो जाए, लेकिन ना ना मेरे भाई ना। अच्छा जनाब, नाहिद अख्तर का गाना सुना मैंने आज पहली दफा, गाने का नाम है गुड न्यूज़,

भाई जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100। राजा अनवर मीरपुर से कराची, मीरपुर कराची से। अच्छा, शो बहुत अच्छा है राजा भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कातिर बख्श बलोच, बिलावल भाई और संजू को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। संजीदा जी परेशान हो रही हैं, पूछ रही हैं कि भाई ये गाना जो है वो कब ईजाद हुआ। भाई बड़े बड़े गाने पड़े हुए हैं, हमने सुने नहीं है। नाहिद अख्तर का ये बड़ा डिफरेंट गाना लगा, तो मैंने कहा चलो गुड न्यूज है तो लगा ही लूं। वैसे तो कोई गुड न्यूज नजर नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही। ओए होए, फरीन शहजादी आ गई। कैसी हो शहजादी? वालेकुम सलाम। और कह रही है अभी रमशा आप ही की शादी की शॉपिंग करा रहे। फुल टाइम शॉपिंग वॉपिंग हो रही है भाई, फुल टाइम। मैंने एक शादी का गाना आज लगाया था वैसे, और इसी बात पर एक और तरफ पंजाबी गाना, इसमें भी अक्सर लोग शादियों में डांस कर रहे होते हैं। हाय हाय मैडम जी की आवाज, और ये वाले गाने अगर हमारे शो में ना हो, फिक्का हो जाता है शो, बिल्कुल फिक्का। फटाफट मैंने लगा दिया।

उज़मा जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 ऑन। उज़मा जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सोच रही हूँ कौन से अल्फाज आपकी तारीफ के लिए इस्तेमाल करूँ, मिल नहीं रहे। अरे बड़ी मेहरबानी उज़मा जी, ऐसा कुछ भी नहीं, आपका प्यार है और कुछ भी नहीं है। और बात सीरियस बताऊं मैं आपको, सिंपल होनी चाहिए, जो दिल में उतर जाए बस। इतनी भारी भरकम बातें, इतना कोई लेक्चर और इतनी कोई शकील गुफ्तगू, तो अक्सर लोग उससे भी परेशान होते हैं, यार ये कौन आरजे, कौन है ये बंदा जो इतनी कोई इतना भाषण। मैं भी तंग आ जाता हूँ कभी कभी, मैं भी जब सुनता हूँ ना, मैं बस सोचता हूँ यार मुख्तसर, कम नॉर्मल बात जो हमारी जिंदगी में हो, हर एक को समझ आ रही हो। तो अगर आप फिर भी आप इस सब चीजों को पसंद करिए बहुत, उज़मा जी थैंक यू वेरी मच। बिलावल कहने, सर ये सॉन्ग पुरानी यादों में ले जाता, बहुत पुराना चल रहा है, तो बहुत पुराना चल रहा है ये, इसी बात पर हाय हाय। और रमशा जी खुश रहे।

क्या बात है जनाब, जबरदस्त ये ट्रैक, जरा नई आवाज में, खूबसूरत आवाज। और कुछ याद करता हूँ पुरानी आवाज को भी और पुराने गाने को भी। और बहुत ही पुराना गाना, जब पीटीवी का दौर था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे और इस तरह के गाने जो थे वो आते थे, और पुरानी यादों में ले जाते हैं आपको। चेक करें तो

0: जनाब क्या कहने क्या कहने, निगत अकबर बिल्कुल यार। वैसे एक बात है पॉपुलैरिटी की कि इतने जमाने के बाद ये गाना मैंने लगाया और लोग इनको नाम से जानते हैं, और इनके बारे में, इनकी गायकी के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। खूबसूरत आवाज, कम गाने गाए इन्होंने लेकिन बहुत पढ़ी लिखी खातून लगती है ऐसे। और अब पता नहीं कहाँ है, जहाँ भी हो खुश रहे सेहत के साथ। और जनाब मिसेस फारूक कह रही हैं पहले की शायरी वाकई अमेजिंग होती थी। नो डाउट शायरी भी म्यूजिक भी बहुत कमाल। और संजीदा जी तो क्या बात है जनाब, तो आपके मतलब का ही गाना लग रहा है मुझे फुल टाइम। अयाज भाई ये फोन कॉल्स कब होंगी? अच्छा ठीक कहना चाहेंगे, इंजीनियर को बोले ना कि जल्दी से ठीक करा ले। अच्छा सरकार हमने तो कहा हुआ है कुछ जरा टेक्निकल मसला है जरा सा, वो कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। भाई जनाब 10:30 10:30 टाइम हो गया और 50 सेकंड की हमें जो है ब्रेक नजर आ रही है, 50 सेकंड की। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
2: ये क्या है भाई?
1: एक जैकेट शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: FM 24/7 365
5: Active, yummy, adorable, 7 ये प्यार तो सुनो यार।

हाय क्या बात है जनाब, क्या बात है। पुराने गाने लेकिन जरा नए स्टाइल में, और सोचा कि इनको भी शामिल कर लें। नौरीन तो आसिफ बहुत खुश होनी भाई, नाइस कलेक्शन, बहुत खूबसूरत सॉन्ग प्ले कर रहे हैं अयाज भाई, बहुत शुक्रिया नौरीन जी, बहुत शुक्रिया। मोहन लाल मैसेज कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई। मोहन लाल अच्छा हाल है, उमरकोट से मैसेज करने का शुक्रिया। अभी अभी ड्यूटी से आया हूँ और FM 100 ट्यून ऑन किया है, आपकी आवाज सुनी दिल को सुकून मिला, थैंक यू। अपनी प्ले लिस्ट में कोई सिंधी सॉन्ग भी चलाओ प्लीज, अदाज जो है ना जरा पाकिस्तानी फिल्मी गाने, उर्दू पंजाबी जो है वो मैं लगा रहा हूँ। सिंधी को फिल्मी गाना मुझे याद वैसे पड़ तो नहीं रहा, लगा दूंगा किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा कोशिश मैं करता रहता हूँ हर तरह का म्यूजिक मेरी क्यू शीट में शामिल हो। आए हाय संजीदा जी कह रही है कि क्या सॉन्ग लगा, दिल के तार भी छिड़ गए। आए हाय अच्छा जी वाकई। बिलावल कह रहे हैं सर प्लेलिस्ट आउट क्लास है, लो फिर इसी बात पर एक जरा लाइव परफॉर्मेंस हो जाए।

0: ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और सुन रहे हैं फिर 100 और साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं। बाबा दोबारा क्वाटोर से मैसेज दोबारा कर दिया उन्होंने। बाबा पढ़ लिया है, दूसरा भी कुछ लिखो बात। जबरदस्त सॉन्ग सिलेक्शन, न्यू रिमेक जबरदस्त है। गयासुद्दीन बलबन, मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। मेहनतें आपको लग रही है क्यू शीट पे, तो ये अच्छी बात है। और संजीदा कह रही है 2 घंटे आज भी जल्दी गुजर रहे हैं। बस अच्छा वक्त गुजरना चाहिए इसी तरह जल्दी, शुक्र करना चाहिए। लेकिन बाकी सही कह रहे हैं। और मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया, गाने फुल कह रही है, बैक टू बैक सुपर सुपर सॉन्ग। चले जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब, 2 मिनट की ब्रेक नजर आ रही है, सुनते रहे अयाज अहमद को एफ एम 100 पर। बस मैं यूं गया और यूं आया।
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोर इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतरीन इस्तेमाल। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां बात है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एल वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान

0: स्टेशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकें। आइए इस खतरे के खिलाफ मुत्तहिद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान है। एएनएफ का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 अयाज अहमद के साथ। और क्या बात है असगर भाई, लव यू असगर भाई। से रहा नहीं गया, उन्होंने फोन ही कर दिया डायरेक्ट। उन्होंने कहा भाई जबरदस्त प्रोग्राम है तेरा। हाय मोहब्बत है सर असगर भाई, मोहब्बत प्यार है आपका और कुछ नहीं। नाइस सॉन्ग, मेरी बाजी को ये सॉन्ग बहुत पसंद था। अच्छा जी याद आ गया, जरीनूर जी क्या बात, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब पसंद की बात हो रही है, क्योंकि रिसेंटली मैंने गाना मेहंदी हसन साहब का सुना। मेहंदी हसन साहब की आवाज तो सभी लोगों को मालूम है कि क्या क्या आवाज है, क्या आवाज है, चंचा गजल और पता नहीं क्या क्या उनको। वैसे तो उनको जो कुछ भी कहा जाए कम है, इतनी खूबसूरत आवाज, गायब कीप के ऊपर फुल कंट्रोल। तो ये लाइव परफॉर्मेंस मैंने इनकी सुनी, इतनी मशहूर नहीं है ये, ज्यादातर लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं सुनी होगी, लेकिन क्या शायरी है, क्या गायकी है, फैन हो गया हूं मैं। थोड़ा सा सुनाता हूं, वैसे तो 8 मिनट की है, लेकिन जरा आप शायरी सुने और गायकी।

क्या बात है जनाब, क्या बात है, मैं तो खो जाता हूँ उसमें। आप रात को आराम से हेडफोन लगा के आराम से सुने, आप लिटरली बड़ा एंजॉय करते हैं। खैर क्या मैं तारीफ करूं, मेरे पास तो अल्फाज वाकई इनके लिए नहीं है। लेकिन संजीदा जी कहनी है कि लोग तो कहते हैं इनके गले में भगवान बोलते हैं। हाँ जी, ये भी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और गायकी पसंद आ रही है फुल टाइम। और गयासुद्दीन बलबन ने जो कमेंट दिया, कमाल, कह रहे भाई वाकई गायकी पे कमाल कंट्रोल था। आजकल लोगों को अपनी जबान पे भी कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया। अच्छा जनाब, और शादियों के भी माहौल हुए हैं। शहनाज कह रही है कि घर में शादी का माहौल है और कोई शादी का ट्रैक हो जाए। शादी वाला तो नहीं है लेकिन ये एक ट्रैक है, जरा इसको चेक करें आप, अचानक से चेक करें आप। थोड़ा थोड़ा मैं आपको गाने सुनाता हूँ, टाइम क्योंकि टाटा बाय बाय कहने का है।

क्या बात है जनाब। अच्छा एक और ट्रैक भी जो आज जरा प्ले होने से रह गया, लेकिन ये मेरा भी बड़ा फेवरेट है। एकदम स्लो गाने और एकदम फास्ट गाने मिक्स कर दिए मैंने फुल टाइम।

Assalamualaikum, Assalamualaikum पाकिस्तान। मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोने। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब एक बजे तक, और एक बजे तक करेंगे खूब अल्लाह दे गुल्ला। इस लगुल में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। कोई ना कोई मैं टॉपिक जो है वो फ्लोट करता हूँ, या कोई रिडल होता है या कोई जनरल नॉलेज का सवाल होता है, आप देते हैं उसका जवाब 3636 पर। लेकिन उससे पहले आपको वार्म अप करता हूँ। वार्म अप करने से पहले एक पैगाम भी है जनाब, जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, ट्रैफिक सिग्नल की पास जारी कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, यानी कि समझ रहे हैं ना। और आज मैं आप लोगों की बात बताऊं कि मैं एक रील देख रहा था, और उस रील में उन्होंने बताया भाईजान अब जो है ई चलान अगर आप अपनी लेन क्रॉस कर रहे हैं, खामखा के कटिंग वटिंग मार रहे हैं, तो उस पर भी हो रही है, चारों तरफ से बैंड बजाया जा रहा है। तो लिहाजा इसमें देखिए कोई वो नहीं है कि हम जो है वो ट्रैफिक पुलिस को या ई चलान वालों को बोले कि यार ये क्या कर रहे हैं, यार क्या बुरा हाल कर दिया हमारे, इतने महंगे महंगे चलान। नहीं भाई जान, वो अपनी जगह सही है, दुरुस्त हम नहीं है, यानी कि समझ रहे ना। हाँ समझे समझे। तो सोने हो, ये सिलसिला इसी तरह है। अभी तो यकीन मानिए कि हमारे अयाज भाई द ग्रेट एन शो करके जा रहे थे, बस हमारी जब बातें शुरू होती हैं तो खत्म ही नहीं होती, इसीलिए इतना म्यूजिक सुना आपने, और मैं कोई गाना भी नहीं निकाल सका, बस यही सोच रहा हूं कि केड़ा गाना सुनाऊं आपको। पहला थोड़ी सी बातें बातें करता रहता हूं आप, और उसके बाद मैं देख लेता हूं कि शायद कोई ऐसा, अरे चले ये वाला गाना चला देते हैं। पहला ट्रैक ए एलो फड़ो

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Music Twister.
5: With the music.
4: With any soil.
6: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। और एक बार फिर बता दें जनाब, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुने। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ एक बजे तक, और एक बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी और सारी रहेगा। मैसेजेस आपके आना शुरू हो गए और आसिफ अली आ गए हैं भाई, लगता कोई क्रिकेट मैच खेलने गया हुआ था। ये कह रहे हैं सलाम टू यू एंड ऑल लिसनर्स। सर कैसे हैं आप? अल्लाह ताला हमेशा आपको ओके टेक रखे भाई जान, आपको भी ओके टेक रखे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहाँ गायब थे आसिफ? को मैच वैच खेलने गए थे। इनामुल हक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जन, कैसे हैं इनाम भाई? माशाल्लाह, रिटर्न टू द शो, वाह वाह वाह, मतलब अब आप आना शुरू हो गए हैं। और कहते हैं कि जी आपके वालिद मोहतरम कैसे? अल्लाह का शुक्र है, सलाम और दुआएं दी हैं। और आंटी चाची कायनात, कोमल, अरूसा, संजीदा, समी, सलीम भाई और सब सुनने वालों को उन्होंने खुश आमदीद कहा है। दुआ करें सब आ जाएं। महनूर कह रही है बाब आपको और अयूब आफरीदी बाय को, मुश्क को, नियाज बहादुर को और सब सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है और कह रहे की हाल है भाई थोड़ा ओके ठेक। यूसुफ भाई पापा उससे भी आ गए हैं एफएम 100 की तमाम फैमिली को और उन्होंने सलाम कहा है, खुसूसी तौर पर आंटी चाची अरूसा गुलबानो, तमाम डॉक्टर्स, इमरान भाई, खिताबुल्लाला, गुफरान भाई और मेरे वालिद साहब को सलाम का। वालेकुम अस्सलाम भाई, भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई जान? हैं जी ते हैं जी। समी भी आ गया भाई आज जल्दी। समी कहाँ गायब था मेरा शहजादा? कह रहे अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई कैसे हैं आप? सलाम टू गुफरान भाई एंड ऑल लिसनर। आ सत्तार भाई है भाई, सत्तार भाई यानी के समझ रहे ना आप? हाँ। और नदीम भाई ये गाना सुनवा दे। क्यों सुनवा दे? क्या लिखा गया हुआ है, गाना क्या है? गुलाम सरवर भाई एक दो आपके मैसेज के हिज्जे करने पड़ते हैं, अंग्रेजी में भी हिज्जे करते हैं। पता नहीं क्या लिखा हुआ, मतलब मैं अजीब अजीब से लफ्ज मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तो आराम से पढ़ेंगे, غلام سرور صاحب پھر اس کے بعد بتا سکیں گے یہ چل سکے گا بھی یا نہیں. نعیم اوان صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم. نعیم بھائی کیا حال ہے؟ میرے تایا زاد بھائی کا نام ہے نعیم, دبئی میں ہوتے ہیں دبئی میں. افتخار کہہ رہے ہیں کیا حال ہے ندیم بھائی, یار بہت انتظار کروایا اور بھائی جان کی گل کرتے پہ ٹائم پہ ہی آیا ہوں. ہاں جی جی ہاں جی. اور سر سلامت رہیں, خوش رہیں, پھولوں کی طرح مہکتے رہو. اللہ جی وہ ہے نا پیار نہ کر یار, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے, اس طرح نہیں کہتے یار. کمل سویرا اور ہماری پپھو, واہ واہ پپھو کا لفظ کیا یار پیارا لفظ ہے یہ پپھو. پپھو ہاجرا آپ کا پروگرام شوق سے سن رہے ہیں. پپھو کیسی ہیں آپ؟ کمل اور سویرا کیسی ہو؟ کوئی اچھا سا سنجی گانا سائیں. ارے سائیں ہمارا پپھو جو ہے سنجی ہے, پپھو کو گانا ڈیڈیکیٹ کرے گا بابا سائیں بالکل کرے گا. اچھا جس نے میسج لکھا ہے اس نے بھی تو اپنا نام لکھنا چاہیے تھا نا. اچھا جی مہنور کہہ رہی باب شاعر علی باغا پختو گانے چلا اس کا. اوکے چلاتے ہیں پختو. پہلے اس کو مارک کر لوں یار جن جن کے لیے گانے چلانے. ہاں کر لیے. اب آپ کو گانا سنا رہے ہیں بہت ہی اعلیٰ. یہ پہلے ہاف میں آپ کو جو گانے سنا رہا ہوں نا وہ ٹریک جو ہے سارے نئے نئے ہیں, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا نیو ٹریکس میرے شو میں فرسٹ ٹائم چلیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے. اللہ پھڑو.

वेलकम बैक हबीबी, मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर। और भाई हमारे सभी ने कुछ और भी लिख दिया है और एक गाने की फरमाइश कर दी है। शो के एंड में प्ले नहीं करना, जल्दी प्ले कर देना। ओके बाय जान। समी का नाम लिख देता हूँ। है भाई, अच्छा लेकिन समी गाने डेडिकेट किसको कर रहे हो ये बताओ पहले, फिर चलाएंगे। और नौरीन तौसीफ बहना आ गई, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, सुने हो कैसे हैं जनाब, कल मेरी बर्थडे है, हाय अल्लाह जी। कुछ हल्ले और गुल्ले वाले गाने डालकर विश कीजिएगा। ओके हाँ भाई, 12 बजे के बाद तो आप बड़ी हो जाएंगी। और धमाके वाला सॉन्ग, ओके जी, ओके जी, ओके टेक। और जनाब कौन है, अलीमुद्दीन यूसुफ भाई साहब एफ बी एरिया कराची से कह रहे हैं, जनाब की कह रहे नहीं, मेरी हसन या सज्जाद अली का गाना सुनना चाह रहे हैं, खिताब गुल्लाला, नसीम कुरैशी, समी शेख, इमरान रियाज, अय्यूबा अफरीदी और मेरे वाले साहब को उन्होंने सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम। रेहान कह रहे हैं, रेहान हूँ, सुन रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। अरे क्या बात है रेहान भाई, पाकिस्तानी सॉन्ग सज्जास अली, सज्जाद अली लिखना चाह रहे थे मेरा ख्याल है, सिर्फ इतना लिख दो हाँ तो मैं समझ जाऊंगा सज्जाद अली है या सज्जल अली है। सज्जाद अली है ना, अच्छा सज्जाद अली हो तो एक टाइप कर देना, वन नंबर होता है ना, नंबर एक, और अगर सज्जल अली हो तो टू टाइप कर देना, मैं समझ जाऊंगा। अच्छा जी, जरीन नून ने सलाम कहा है जनाब वालिद साहब को और चाची को और संजू को और तमाम सुनने वालों को, क्या बात है। आज मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी जो है वो कुछ ना कुछ कर दिखाई। जिंदगी का जिक्र इस वजह से किया, जिंदगी का आ गया मैसेज, जिंदगी के साथ है नरीम जी, शुक्र मैं भी ठीक हूं, कुछ शो तक साथ हूं, कुछ शो तक क्यों साथ हूं, उसके बाद क्या तंदूर में रोटियां लगानी है, वजह बताइए। इनामुल कह रहे भाई जान गुलाम बादशाह का ओएसटी लगा दीजिए। इनाम भाई अभी नए नए गाने चला रहा हूं यार, सारे यंगस्टर्स खुश हो रहे हैं, आप भी खुश होना यार, यानी क्या समझ रहे हैं ना आप, ये छोटे छोटे से गाने होते हैं दो दो तीन तीन मिनट के। अभी एक और सुनाता हूँ आपको, बड़ा जबरदस्त सा गाना है, जरा सुने।

0: वेलकम बैक सुने हो, उम्मीद करता हूँ कि जो गाने चल रहे हैं फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे बहुत से लोग, और वो सोच रहे होंगे कैसे गाने हैं, लेकिन यंगस्टर्स ने सुने होंगे। जिन्होंने ये गाने वाले सुने हो बता दें भाई, एक्सक्लूसिव ट्रैक चला रहा हूँ भाई। लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आपकी फरमाइशें पूरी नहीं होंगी, वो भी होंगी। डोंट वरी डोंट वरी। आसिफ कह रहे हैं कि सर जी सर कुछ बिजी था मैचों के सिलसिले में, कि अंपायरिंग कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई ये भी तो बताओ। जिंदगी कह रही है कि हम लोगों को समझने में गलती कर जाते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिंदगी, इसकी वजह भोलापन भी हो सकता है, इसकी वजह आपका दिल साफ सुथरा है ये भी हो सकता है। क्योंकि दिल साफ हो सुथरा हो, कोई खबासत दिमाग में ना हो, मुनाफिकत ना हो इंसान के अंदर, तो वो हर एक को अपने जैसा समझता है। यानी कि समझ रही है ना आप, बताइएगा जिंदगी, जरा जरूर बताइएगा। तो होता ये कि उम्मीदें ज्यादा वाबस्ता रखता है इंसान, और उम्मीदें क्यों ज्यादा वाबस्ता रखता है इंसान दूसरे वाले से, क्योंकि वो खुद भी एक्सपेक्टेशंस भी उसकी ऐसी होती हैं, उसका दिल भी उसके लिए उतनी मोहब्बत और साफ सुथरा होता है, लेकिन सामने से जब वैसा रिप्लाई नहीं आता तो हम ये समझते हैं कि हमने गलती की है उसको समझने में, लेकिन ऐसा है नहीं। और एक मैं वैसे अपने तजर्बा आप लोगों को एक बताता हूं बड़ा जबरदस्त, कभी भी किसी भी इंसान को आप फौरन जो है ना नहीं समझ सकते, किसी भी इंसान को। अगर आप ये कहते हैं ना बहुत आप शातिर हैं, आप फौरन देखकर ही पहचान लेते हैं कितने पानी में है भाई, ये वक्ती तौर पर सही हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर ये इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूं। कुछ लोगों के तुक्के भी लग जाते हैं, वो जो प्रेडिक्शन कर रहा था वही हो रहा था, सामने वाले को लगता है यार ये तो सही कह रहा था, ये तो ऐसा ही निकला, जबकि वो वैसा नहीं होता। होता क्या है कि किसी इंसान को जानने के लिए वक्त लगता है, वक्त। जिंदगी में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, और जब वो आपके साथ साथ होता है तो उतराव में भी पता चलता है वो कैसा है, चढ़ाव में भी पता चलता है वो कैसा है, फिर कहीं जाकर इंसान की परख होती है और समझ में आती है। मैं तो ये समझता हूँ, जिंदगी सोच बिना साज न बनने पाए। जिंदगी बताओ मैंने क्या बात जो की है, इससे मुत्तफिक हो या नहीं? नदीम भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं ब्रेक की जाने जा रहा हूँ।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery, दिल को है आराम।
0: FM247365। वेलकम बैक आएंगे। अच्छा जनाब नदीम भाई कैसे हैं आप? ये गुलाम

नदीम भाई, मैं कुछ दिन में आपका प्रोग्राम नहीं सुन पाया, मैं बीमार हो गया था। यार फिर ये गाना सुना दे, गोरे रंग का जमाना कभी हो के न पुराने, गोरी डरी तुझी की शिका है। गुलाम सरवर भाई, उसका रंग गोरा है ये तो बताइए पहले, फिर हम चलाएंगे, वरना नहीं चलाएंगे। बताएं उसका रंग गोरा है। गुलाम सरवर भाई की मैसेज के बाद समी सबर कर ले मेरे शहजादे। नदीम भाई, हमारी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, गुलाम सरवर की भी ठीक नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ी बेहतर है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी भी बेहतर हुई है तो इन्होंने मैसेज किया। तो भाई उनको डेडिकेट करो ना गाना, तुम यस या नो लिखो पहले, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ताकि फिर मैं गाना चलाऊं, फिर कहोगे कि आखिर में चलाया, यानी कि समझ रहे ना आप। इनामुल हक कह रहे हैं कि मैं नाराज हो जाऊंगा कुट्टी। क्यों कुट्टी भाई? है इनाम भाई, दसो तो सही, गाना न चलने की वजह से कुट्टी हो जाते हैं। सही जा रहे हैं, कह रहे यस, ओए होए, बस इसने यस कर दिया तो भाई गाना हम फौरन चला रहे हैं। तो ये ट्रैक जो हम चला रहे हैं जनाब समी की जानिब से उनके होने वाली दुल्हन के लिए, एलो पढ़ो।

गधे पर सवार होकर ढोल अपने सर पे उठाकर जा रहा था। कुछ लोग उसको देखकर हंसने लगे, तो वो उनको बोला, हंस क्यों रहे हो बेवकूफ लोगो, सारा बोझ तो गधे पर है। क्यों सारा बोझ गधे पर क्यों डालूं, थोड़ा सा वजन मैंने भी उठा लिया तो क्या हर्ज है। वाह वाह वाह वाह भाई, ये हैं हमारे मोहनलाल साहब यूके से, पाकिस्तानी यूके उमरकोट सही, और उन्होंने बोला सही, एक आतिफ का गाना हो जाए तो क्या बात है।

वेलकम बैक कहेंगे। भैया गाना पसंद आया या नहीं आया? हैं जी, ते हैं जी। अच्छा भाई, इनाम उल हक कुट्टी क्यों होंगे ये नहीं बताया तुमने। यूके से जनाब मैसेज आया है कि एक जोक है, शामिल कर लीजिए। एक आदमी गधों पर सवार होकर गधों पर गया।

और आसिफ कह रहे हैं सर कोई सिराय की गाना भी तो प्ले करे ना सही सही करेंगे करेंगे सब गाने प्ले होंगे यार डोंट वरी आसिफ। इफ्तिखार कह रहे हैं नदीम भाई प्ले हम तेरे शहर में हैं मुसाफिर की तरह। इफ्तिखार भाई वो गजलों के प्रोग्राम में जुबरात को चला दूंगा आपके लिए ये वारा रात से हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बाबू मेरे झूठे झूठे हाथ देखे ब्रेक कम चलाए। अच्छा मेरे जुड़े हाथ देखिए ब्रेक जरा कम चलाए ब्रेक तो चलेंगी ना मेरा बच्चा। चलो इसी बात पर मानूर बाबू का मैसेज आ गया है तो मानूर की जानिब से ट्रैक डेडिकेट करेंगे जनाब हमारे बहादुर भाई को और हमारे अयूब आफरीदी भाई को। तो ये गाना एलो फड़ो

वेलकम बैक सुनियो नरे बारान दे बारान और नरे बारान हमने चलाया जनाब हमारी प्यारी सी बहन मानूर के लिए, उन्होंने डेडिकेशन की के लिए कहा था। और इकरा कह रही है, इकरा भी आ गई। इकरा तुम्हारे लिए गाना निकाला हुआ था हमने पहले से, इतना सारा गाना चलाया, न्यू सॉन्ग चलाए। और इकरा तुम्हें कैसे लगे? और कह रही है सलाम, कैसे हैं? सलाम टू ऑल फैमिली। कल का शो में आपने मुझे जैन का सॉन्ग डेडिकेट किया था, उसके लिए थैंक्स। होए होए सुन रही थी। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। जीती रहो बच्चा। नदीम भाई जी उसका रंग गोरा है। अरे लजी बस फिर चला देंगे गुलाम सरवर साहब, अगर उसका रंग गोरा है तो फिर चला देंगे। और आगे बढ़ते हैं। अमीन भाई कह रहे हैं सलाम के बाद के नदीम भाई स्वीट बिग ब्रदर कैसे हैं आप? और माजी ओके ठीक, शो वीआईपी ऑसम बिंदास बोले दो जगास। उमेर उबाब को जी को ट्रैक डेडिकेट कर दीजिएगा। अबे यार सारे इतनी फरमाइशें कर रहे हैं, मैं पूरी कैसे करूंगा? शहजादो शहजादियों मन झूम झूम। ओ गाना तो बहुत अच्छा है भाई, कोशिश करेंगे सेकंड हाफ में चला दें शो के। और यार गाने आप लोगों के ज्यादा, एक तो क्यों ना आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा गाना सुनाया जाए, ठीक है भाई। और अभी हम आपको गाना सुना रहे हैं, पुप्पो के लिए गाना चला रहा हूँ भाई। हमारा पुप्पो सुन रहा है, पुप्पो हाजरा कमल सवेरा, ये लोग सुनता है कि नहीं सुनता? सिंध से सही इन्होंने मैसेज किया है, तो हमारे जितने भी प्यारे प्यारे सिंध से सुनने वाले हैं और हमारे कराची में भी जितने भी सिंधी बहन भाई, उन सब के लिए सही ये गाना है पुप्पो, आपके लिए खसूसी तौर पर।

वेलकम बैक सुनियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा। और जनाब आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि एशिया स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड करें आप 3636 पर। बढ़ते हैं आपके मैसेजेस के जाने। अच्छा जनाब सलाम भाई, कैसे हैं आप? FM 100 की ऑल फैमिली को सलाम। शहजाद बाबू, ए बाबू किधर है? अच्छा बाबू से मुझे बेबी याद आई और बेबी से मुझे शोखो चंचल चुलबुली मुश्क याद आई, मुश्क भी गायब है। तो बाबू बहुत दिनों के बाद आए, यानी कि समझ रहे हैं ना। इकरा करिए सॉन्ग नहीं चलाएंगे इकरा, अभी ये कोशिश करेंगे इकरा फिर भी, यानी कि समझ रही है ना, मार्क कर देते हैं। चल गया तो चल गया, वैसे बड़े अच्छे अच्छे गाने चला रहा हूँ मैं। बाबू अल्लाह आपको मजबूर वक्त और मगरूर दौलत से हमेशा बचाए, आमीन। क्या दुआ दी है मेरी प्यारी सी बहन ने, मजबूर वक्त और मगरूर दौलत, दो लफ्ज हैं और क्या कमाल के लफ्ज हैं, इनका इस्तेमाल हम जिंदगी में करते हैं। मजबूर वक्त हर इंसान पर आता है थोड़ा बहुत, यानी कि समझ रहे हैं ना, और उस वक्त इंसान को पता चलता है बेबसी का। और जिन लोगों के पास दौलत होती है और वो मगरूर हो, अल्लाह बचाए, वो बहुत खैर जी अल्लाह बचाए वाकई यार। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन इतनी प्यारी दुआएं करने की। और हमारे उम्मे रुबाब आ गए हैं, जी करी सलाम सबको। حال شما خوبی؟ حال چطور هستی؟ خوب هستی؟ جان جوار است؟ سب کو انہوں نے سلام کہا خصوصی طور پر مجھے قادر بخش بلوچ بھی آ گیا ہے صحیح کہتا ہے ندیم بھائی آپ کو اور سب سننے والوں کو سلام کیسے ہیں آپ بالکل چلے گا بھائی عاطف کا گانا اور سنجو جی کو سانگ ڈیڈیکیٹ کر دے ویسے آج زرین نور نے سنجو کو ڈیڈیکیٹ نہیں کیا گو کہ سنجو نہیں آ رہی ہیں मगर आप लोग उनको गाने डेडिकेट करते हैं, बड़ी बात है यार, वेरी गुड यार। और थैंक यू बाबू, ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, रिकॉर्ड भी किया। अरे वाह भाई वाह। और मैसेजेस बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। इसे बात पर हम गाने की जानिब भी जाना चाहिए यार हमको, तो हम गाने की जानिब जा रहे हैं जनाब। और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे प्यारे से गुलाम सरवर की जानिब से, वो किसी गोरी गोरी को करना चाह रहे हैं डेडिकेट, तो एलो फड़ो।

0: जनाब 12 बज चुके हैं और तारीख बदल चुकी है।
1: मुबारक हो।
0: अरे हमारी प्यारी सी बहन नरेंद्र जी को मुबारक हो। अरे सालगिरह मुबारक हो। अरे नरेंद्र जी सालगिरह मुबारक हो।

हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ, आप सालगिरह बहुत मुबारक, जियो हजारों साल, हंसती रहो मुस्कुराती रहो, शांत रहो आबाद रहो। FM 100 की जान, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब आपको हम गाना सुना रहे हैं, बोल अल्लाह गुल्ला। ये ट्रैक FM 100 की जान, हमारी प्यारी सी बहन लिसनर नौइन तौसीफ के लिए।

0: वेलकम बैक। और उम्मीद करते हैं हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ को ट्रैक पसंद आए होंगे, और आपके लिए ढेरों दुआएं मेरी प्यारी सी बहन। अल्लाह ताला आपको हजारों खुशियां अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जिन जिन की भी बर्थडे है भाई आज के दिन, उन सबको भी हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बढ़ते हैं आपके मैसेजेस के जानिब। अरे भाई जान, खुशबू वाला मैसेज आ गया, क्या बात है, मुश्क आ गई है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आपने याद किया चुड़ैल हाजिर, बस चुड़ैल तुम भी शोखो चंचल चुलबुली जो है, मैं कहता था कायनात को बेबी, तो आपको भी आज से, वो तो चली गई है शादी होकर, आज से आप भी शोखो चंचल चुलबुली हैं, चुड़ैल आ गई है। पर ऐनक पहनने वाला शख्स का एहतराम करें, क्योंकि वो ये वो वाहिद मखलूक है जिसने आपको देखने के लिए पैसे लगाए हैं। गुड है, गुड है। आपको मेरे रिप्लाई देने की स्पीड से मैं AI तो नहीं लगती, तुम आई लगती हो। मर्द की पसंदीदा औरत हमेशा नाराज रहती है, जरा टॉर्च की रोशनी फेंके सर जी। वाह वाह वाह वाह, जो पसंद हो उसे मनाए, मनाने में मजा है, उसकी नाराजगी में भी अदा है। वो रूठे तो दुनिया हसीन है, वो रूठे तो लगे दुनिया हसीन है, मर्द की यही तो सबसे बड़ी सजा है। सच्ची है मोहब्बत है अल्लाह जी। अच्छा इक्तबास, हंसी मजाक में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। अयाज के शो में बार हाँ मैसेज किया था, आप दोनों 100 के पिलर हैं। अभी कुछ कहना नहीं चाहूंगा। थैंक यू सो मच नौरीन जी को हैप्पी बर्थडे का है मुश्क ने। अभी तो बहुत सारी बर्थडे विशेज आएंगी, नौरीन का भी मैसेज पढ़े। प्यार करने वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं आता, पता है क्यों? क्योंकि उसके दिल किसी और के पास होता है। ये वजह नहीं होती, मैं और भी बताऊंगा। अब ऐसी बातें मेरे अलावा कौन बता सकता, बस आप लोग मेरी कदर किया करें। प्यार करने वाले को हार्ट अटैक नहीं आता, वाकई में नहीं आता। अब ये बाकी बात नहीं करेंगे। शुक्रिया नदीम भाई, यहाँ मेरे बच्चे मुझे विश कर रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, तो रेडियो सेट ऑन होना चाहिए था ना, नालो नाल फुल टाइम एंजॉय है जी, ते हैं जी भाई। जफर जफरी आ गए हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यहाँ कैसे हैं जफर साहब, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, सब सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है, और अल्लाह पाक आपको सेहत और जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुबह आमीन। उमेर रुबाब को बहुत सा सलाम कहा है जफर साहब ने, और भाई सॉन्ग बहुत अच्छे सुना रहे हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ए समी कहता है नजीम भाई आप, हाँ जी बिल्कुल गए थे, मैंने आज देखा है, देख लो भाई कैसा लग रहा था, डैशिंग लग रहा था या नहीं बताओ। अगर मुझे पता होता आप वहां गेस्ट हैं तो मैं जरूर सुनता। अरे कोई मसला नहीं है, सो स्वीट यार, सो नाइस। आजकल तुम वैसे ही बहुत मसरूफ हो, यानी कि समझ रहे हैं ना। ब्रेक नहीं चलाएगी तो FM कैसे चलेगा। अच्छा ये उसके मैसेज पर था, महानूर के मैसेज पर इन्होंने जवाब दिया था कि ब्रेक नहीं चलेगी तो शो कैसे चलेगा। शुक्रिया कहा है हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब ने कि आपने मैसेज को शामिल किया, आपकी फरमाइश भी हमारे जहन में है, डोंट वरी। स्क्रॉलिंग कर रहा हूं जनाब आप लोगों की मोहब्बतें मैसेजेस की सूरत में। कादिर बख्श भाई आपका भी गाना चलेगा, डोंट वरी। अच्छा जनाब अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, मैं आपसे नाराज हूं।
1: नफीसा बाना तुम मुझसे क्यों नाराज हो बताओ,
0: आपने मेरी पसंद का सॉन्ग नहीं सुनाया आज, प्लीज मुझे मेरी पसंद का गाना सुना दे, प्लीज। मुझे जलाल अम्मा फौजिया सोमरो का गाना सुना दिया हमने। मेरी अम्मी दुनिया से रुखसत हुई हैं, मुझे अकेला कर गई, उनकी याद आती है तो प्लीज सुना दे। तो अभी तो चलाया था उनका गाना, फायजा अली का सुनाया था, फौजिया का नहीं सुनाया था। तो वैसे एक बात बताऊं तुम्हें नफीसा, हमारी अम्मा भी छोड़कर चली गई है, जिंदगी ऐसी है भाई, आने जाने का नाम है, बस जिसका जो नंबर होता है, यानी कि समझ रही है ना, बस तो ज्यादा दुखी ना हो, इसका नेमोल बदल नहीं मिलेगा, बस अम्मा एक ही होती है दुनिया में, आपकी जिंदगी में, आपकी दुनिया में, इस कायनात में आपकी माँ एक ही होती, बाप भी एक ही होता। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, और जो जा चुके हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, ठीक है ना, और आप सबको हौसला फरमाए जिन जिन के नहीं है। सलीम सलाम भाई कैसे हैं? चाची हमार हमार हिमराव भाई और सब कैसे हैं? शहजाद बाबू कह रहे हैं, बाबू यार हमारे चाचा यानी कि चाची के हस्बैंड का इंतकाल हो गया था, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए, और इस वजह से चाची जो इद्दत में है तो चाची शो में नहीं आ रही हैं, बाकी सब ठीक ठाक है। ओके ठीक है, आप चाचा के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा और हमारी प्यारी सी चाची के लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा भाई अच्छा जी क्या लिखा हुआ है, मेरे SMS पढ़ना गुनाह है? जो नदीम भाई तुम नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, यार आपके ये मैसेज ही समझ में नहीं आ रहा, आप अपना नाम लिखे मैसेज में, मैंने एक एक मैसेज सारे पढ़े, यानी कि समझ रहे ना आप। नदीम भाई मेरा सॉन्ग सुना दो भाई, सुना देंगे यार, सब गाने चलेंगे भाई, नालो नाल चलेंगे। कुछ कह रहे हैं कि भाई आप बातें नहीं करें गाने सुनाएं, कुछ कह रहे हैं कि गाने बातें करते रहें और गाने मत सुनाएं, ये मैंने क्या चल रही है। आप बेवफा हो मालूम, मन खूब हमेशा याद रखता है, हाय मेरा मन भी आपको हमेशा याद रखता है, ऐसी बात नहीं है, और मैं बेवफा नहीं हूं, ये पक्का पक्का बात है। अमीन चार्ली कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम उमर बाब, मेरा नाम नहीं लिया आपने, इन्होंने गाना भी डेडिकेट करना है भी आपको, वो चलाऊंगा गाना अमीन। और आप कैसी हैं, तबीयत ठीक है आपकी? मुझे खुशी इस बात की है कि है रुबाब जी कि आप आ गई हैं, है? और नदीम भाई थैंक्स, ये गाना मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, शी इज पख्तून। कौन सा गाना गिफ्ट किया है सरवर भाई? गोरे रंग का जमाना कभी होगा तो भाभी अगर पठान है तो गोरे रंग का जमाना ही होएगा ना भाई जैन, हमारा सलाम कीजिएगा भाभी को। और मानूर कह रही है एक सॉन्ग दूसरे से बढ़कर है, अरे वाह भाई वाह, गाने अच्छे लग रहे हैं भाई, शुक्रिया शुक्रिया। नौरीन जी कह रही हैं, नौरीन जी को हैप्पी बर्थडे, हमेशा खुश रहें। जरीन नूर ने खामोशी तोड़ दी आखिरकार, और हैप्पी बर्थडे नौरीन, आप ही अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशियां अता फरमाए, ये कह रही हैं मानूर। और अफशा आ गई, अरे अफशा कैसी हो? सलाम नदीम सर, सलाम जावेद सर, सलीम जावेद का सॉन्ग एक बार चौया सुना दीजिएगा। अच्छा आपने फरमाइश की है 12:15 बजे, कोशिश करेंगे अफशीन जल्दी फरमाइश किया करो, शुरू किए घंटे में। और मानूर का फिर मैसेज, एक मैसेज दो मैसेज तीन मैसेज आए हैं, नौरीन आपके लिए, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू का है। अब बढ़ते हैं जनाब एक और गाने के जाने पर, और ये गाना किधर गया यार, हाँ जी अभी हम जा रहे हैं जनाब एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे कादिर बख्श की जानिब से संजू को, और हमारा UK से मोहन लाल उसकी फरमाइश है, क्योंकि गाया आतिफ ने और दोनों ने आतिफ के गाने की फरमाइश की थी, तो लिहाजा आपके लिए ये ट्रैक जनाब मोहन लाल और कादिर बख्श आपकी जानिब से डेडिकेट टू संजू, एलो फड़ो आतिफ की आवाज़।

वेलकम बैक आएंगे सुनियो कदी ते हस बोल वे न जिंद साडी रोल वे। इसका उर्दू में तर्जुमा है कि कभी तो हंस लिया करो और बोल लिया करो, हमारी जिंदगी बर्बाद मत किया करो यूं खामोश रह के, यानी कि समझ रहे ना। और जनाब बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। मानूर कह रही है हैप्पी बर्थडे। अरे कितने मैसेज करोगी मानूर। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, नफीसा बानो, आज फौजिया सोमरों का प्लीज प्लीज सुना दें वरना कभी बात नहीं करूंगी। मुझे जी जल अमा सुने प्लीज, मुझे जी जल अमा सुने प्लीज। खैर फौजिया सोमरों का गाना हम थोड़ा सा चला देंगे आपके लिए, ये आपकी धमकी की वजह से मैं नहीं सुना रहा, ये आपकी अपनी अम्मी से मोहब्बत की वजह से सुनाऊंगा मैं, बल्कि आपको अभी थोड़ा सा गाना सुनाऊंगा ताकि आपकी नाराजगी या अम्मी की याद जो है वो पक्की पक्की हो जाए। हैं जी ते हैं जी।

0: काठो चंदो आहे कारो वगो भले बुरो मानु पाए बुरो मानु पाए आहा बुरो मानु पाए
1: वेलकम बैक कहेंगे जनाब और अब फौरन से बेशतर आपके मैसेजेस की जानब अमीन कह रहे हैं कि सिस्टर नौरीन तौसीफ हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी और एने भाई और उमेर बाप की जानब से बहुत बहुत मुबारक हो हमेशा खुश रहें शाद रहें आबाद रहें। उमेर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक उमेर आप कैसे हैं जरा बताइएगा और मुश्क कह रही हैं आप दादा जान जो है इस मामले में PhD किया हुआ है इस मामले में जरा बताओ मैं भूल गया और कह रही है कि मुझे कायनात अच्छी लगती है आपसे तारीफ सुनकर मिलने का शौक है हम खुद नहीं मिले बर्थडे पे आई थी वो मेरी अब तो शादीशुदा हो गई मिसेज पता नहीं क्या था अरसलान आपने याद रखा है कायनात को ये अच्छी आदत है वरना लोग तो ऐसे फनकार रहे भूलने में कि इंसान को चंद लगते हैं शुक्र आप उन अच्छे लोगों में से नहीं है कायनात के लिए उसकी पसंद का सॉन्ग उनको डेडिकेट करें हम आपको करेंगे उसकी जानिब से यानी कि समझ रही है ना आप अभी थोड़ी देर में करेंगे यार जिन एक बात बताएं मुझे तुमने जिन बना दिया है जिन एक ही अच्छा है यार वो क्या नाम है उसका हमारा इमरान रियाज अरे जिन वो भी कहती थी अच्छा वो इमरान रियाज को जिन कहती थी आपने मुझे कहना शुरू कर दिया ओके टेक और लोग कच्चे कानों के क्यों होते हैं मुखलिस दोस्त खो देते हैं उनके कान पक्के कैसे कर सकते हैं ये तो वक्त गुजर गया बस एवं ही पूछ रही हूं इसका बहुत ही आसान सवाल है बाजार जाइए 1 किलो सीमेंट लाइए उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और जो दोस्त है उसके कान जो है ना वो पक्के कर दें और आज मैंने सोच लिया है कि आप लोगों की फरमाइश जो है ना वो पूरी करनी है तो अभी हम जा रहे हैं जनाब इनामुल हक साहब ने फरमाइश हमें बहुत पहले की थी और उन्होंने कहा था कि नदीम भाई अगर ये गाना नहीं चला तो दिल बहुत दुखेगा तो हम जो है वो अपने प्यारे से इनामुल हक साहब की फरमाइश पूरी कर रहे हैं तो इनाम भाई आपकी जानिब से उम्मीद रुबाब ये गाने आपके लिए हैं एलो फड़ो

भाई इन्होंने हमारे अमीन साहब ने कहा था कि गुलाम बादशाह का गाना चला दीजिए ओएसटी, हमें यही मिला भैया, वो हमने चला दिया। अब आप ये वाला गाना नहीं निकला तो अब हम क्या करें? तो हम ये काम करेंगे कि आपके लिए जो है वो एक गाना जो है वो हमारी अफशा ने सलीम जावेद साहब की आवाज के लिए कहा था, उनका गाना, अफशा की भी फरमाइश पूरी हो जाएगी और आपकी डेडिकेशन भी। ऐसे सलीम जावेद की आवाज, अफशा आपके लिए।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो। अच्छा मैं थोड़ा सा स्लो हो रहा हूँ भाई, स्लो इस वजह से हो रहा हूँ कि मुझसे हो गई है एक गलती है जी। और गलती भी हुई है आपकी डेडिकेशन। असल में जो मैंने पहले गाना चलाया था वो मैंने डेडिकेट करना था इनामुल हक साहब ने उसकी फरमाइश की थी, ना के अमीन भाई ने। लेकिन आप लोगों की इतनी मैसेजेस होते हैं, इतनी फरमाइशें होती हैं कि इंसान क्या करे। ये वाला ट्रैक जो था इनामुल हक साहब ने इसकी फरमाइश की थी और हमारे अमीन भाई ने जो उमर बाप को ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा था वो अभी चलना है। तो अमीन भाई नाराज होने की जरूरत नहीं है, वो भी गाना निकाला हुआ है मैंने, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा जनाब चंद मैसेजेस शामिल कर लेते हैं और उसके बाद जो है दोबारा आपको ट्रैक की जानिब लेके जाएंगे। वैसे जिन हम असल को भूलकर मसनूई को जिंदा रखते हैं, पसंद कर देते हैं, सीमेंट कौन सी चलेगी, बिल्कुल पक्का कर देने वाली। बाबू आपके उर्दू में ये पंजाबी टच कमाल खाएंगे और उसके साथ पख्तो टच भी आती है, वो कैसा बात करते है तो उसके साथ साथ वो कभी कभी सीधी टच भी लेकर आते, यानी कि समझेंगे ना। और मुश्की आप खुशबू की खुशबू ही रही रहे, चुड़ैल मत बने, सिस्टर चुड़ैल को भी डेडिकेट कर दीजिएगा गाना। अमीन चार्ली कह रहे हैं नदीम भाई। अरे यार ये ओएसटी आप कह रहे हैं, ये ओएसटी नहीं है, मैंने अच्छा समझ गया भाई, ये वाला गाना अमीन भाई नहीं चला रहा, एक बड़ा मेलो से ट्रैक चला रहा हूँ। अब जिस गाने का जो टाइटल है ना, ये टाइटल इतने सारे गानों का है कि मैं काफी देर से वही समझा था और अभी यकीन माने कि वक्त इतना नहीं है कि दोबारा तलाश करूं। वैसे मैं समझ गया हूँ कि आपका कौन सा गाना है, तो हो सकता है हम वो चलाए अभी जे यार। और जनाब अभी हम बढ़ते हैं एक और ट्रैक की जानिब और ये ट्रैक हम डेडिकेट किसको कर रहे हैं। हाँ भाई हमारी इकरा जो है, इकरा ने फरमाइश की थी, हमारे एक बड़ा जबरदस्त सिंगर है नया, तो उसके नए ट्रैक की फरमाइश की थी, तो उसका नया ट्रैक तो अभी मैं नहीं चला रहा, वो नेक्स्ट शो में चला दूंगा, बट अभी आपको उसी की आवाज में एक गाना सुना रहा हूँ जो बहुत मशहूर है।

वेलकम बैक सोनियो। और ये ट्रैक उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। तो जनाब आपके मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं या ना बढ़े, वक्त जड़ा है बहुत ही तेजी के साथ उड़ रहा है। और उमेर साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। उमेर का मैसेज तो हो गया था, अमीन का भी हो गया था। बाबू आपके उर्दू में दोबारा भेज दिया भाई। रहने भाई आपको मेरा सलाम, सब सुनने वालों को भी मेरा सलाम। इश्क नचावे गली गली। मिर्जा साहब आप कौन कौन सी गली में गए जरा ये बताइएगा। मिर्जा नईम बेग साहब का, मिर्जा नईम बेग लाहौरी साहब का ये मैसेज आया था। और सर आपकी फरमाइश पूरी नहीं हो सकती क्योंकि वक्त बहुत महदूद सा रह गया है। और अभी तो मैं आज तो मैसेज भी बहुत कम पढ़ रहा हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों के तमाम गाने चला दूँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया बर्थडे की मुबारकबाद देने के लिए। नॉन इंटोसी कह रही है और कह रही है लाइव आ जाए मेरी प्यारी सी बहना, टाइम बहुत कम रह गया। कल सही, कल भी आपकी बर्थडे है। हैं जी ते हैं जी। फरहीन शहजादी आ गई हैं और कह रही है हबीबी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके सुनियों। मैं भी आ गई हूँ, तमाम लिसनर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर क्यों लगाई है बच्चा, जरा बताओ जो सही। तो जनाब अब फौरन से पेशतर बढ़ते हैं। ये ट्रैक जो है ये उमेर उबाब को और मुश्क को डेडिकेट किया है हमारे प्यारे से अमीन चार्ली ने।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो, और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको बता दे जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर, अब यहाँ से आप लोग मुझे कहते हो मैंने सुने। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूँ आपके साथ और आपका और मेरा साथ जो है वो एक बजे तक है और ये हल्ला गुल्ला जारी और सारी है, और इसके बाद आप बेहतरीन शो सुनेंगे अजमल शोभी साहब का। शोभी भाई आ चुके हैं, द ग्रेट अजमल शोभी हैं जी, ते हैं जी। और आसिफ अली कह रहे हैं अने सोनियो गुड नाइट। गुड नाइट क्यों भाई, आज मूड सेट नहीं लग रहा है, मेरा ख्याल है मैच वैच हार गया है ये। अमीन कह रहे हैं मुश्किल सिस्टर क्या आप विदाउट मेकअप चुड़ैल का रूप अख्तियार करती नजर आती हैं या प्यारी सिस्टर आई एम जोकिंग डोंट माइंड सिस्टर। चार्ली भाई इस पर क्या कहेंगी मुश्किल। और मेहमान आ गए थे सोनियो इसीलिए लेट हो गई थी, ये कह रही है फरीन शहजादी। कोई बात नहीं मेरी प्यारी सी बहन, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और नदीम उमर बाब आपको, अमीन को, जफर को खास थैंक यू बोला है उन्होंने, वाह वाह वाह। खैर जी इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों दास पड़ते हो सर्दियों की शामों में। नौरीन कह रही है रात को डिनर दिया है बच्चों ने कबाब चीज में, क्या बात है, शायद के आपका शो ना सुन सकूं। अरे नहीं नहीं नहीं, इफ शो के ये खुशियां जो होती है ना ये बटोरनी चाहिए खुशियां, और यकीन मानिए कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी फैमिली की बात कर रहा हूं कि फैमिली में अक्सर जो बर्थडे है वो याद नहीं रहती, भाई को भाई की नहीं रहती, बहन को भाई की नहीं रहती, बहन भाइयों की बात कर रहा हूं आफ्टर मैरिज। और लेकिन एक जो अपनी फैमिली जो बन जाती है ना कि शौहर बच्चे ये जो है फिर उनके साथ बच्चे, तो फिर जो आहिस्ता आहिस्ता आप उम्र का जो हिस्सा तय करते जाते हैं और आपसे जुड़े हुए आपके पेड़ों की जो शाखें हैं वो जब खिलखिलाती हुई फूल की सूरत में आपके सामने होती है तो आपको बड़ी खुशी होती है। उम्र का एक हिस्सा इंसान जो है वो गवा देता है क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है जिसका इल्म सिर्फ रब्बे ताला की जाते पाक को है और किसी को नहीं है, तो ये लम्हा कौन किसका किस वक्त आ जाए पता नहीं है, उम्र का एक हिस्सा कम हो जाता है। लेकिन जो खुशियां बटोरने वाली मैं बात आपसे कर रहा हूं कि जो वक्त है और जिसमें आप मुस्कुरा रहे हो, जिसमें आपको दिल को खुशी मिल रही हो, उस वक्त को हाथ से जाने मत दिया करें। मगर कुछ कमाल के लोग भी होते हैं, अचानक याद आ गया भाई किसी को खुश देख ही नहीं सकते, मतलब एक बर्थडे पार्टी हो रही है मिसाल के तौर पर और आपने बुला लिया भाई बहन भाइयों को रिश्तेदारों को थोड़ा से बुला लिया, चलो गेट टुगेदर हो जाएगी, वहां पर आकर ऐसा एक दाना फेंकेगा कोई ना कोई कि बैंड बजा देगा पूरे फंक्शन का, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो खुशियां बटोरनी चाहिए, खुशियां समेटनी चाहिए और गम को जो है वो बांटना चाहिए उसे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, इसी बात पर लेकर जाना है मैंने आपको एक गाने की जानिब, और बड़े धमाल और कमाल के गाने होंगे। अच्छा भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, हमारे अयूब आफरीदी भाई जो हैं वो एक सफर पर निकले हैं तो उनके लिए आपने बेतहाशा दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला उनको खैर आफियत के साथ सफर में रखे और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद जब वापस घर को लौटे तो घर तक अल्लाह ताला की सलामती में रहें। लेकिन वो शख्स एक ऐसा शख्स है कि दौरान सफर भी मैसेज कर रहा होता है और उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ तीन नाम है, उन तीन नामों को वो एक ट्रैक डेडिकेट करना चाह रहे हैं, और हमारे अयूब आफरीदी भाई की जानिब से GBN और माहीन गुलबानो और निगत को ये ट्रैक डेडिकेट है जनाब, एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक। ये लाला यार आपने तो रंग जमा दिया है रा जबरदस्त। और मानूर कह रही है मेरी तरफ से अयूब आफरीदी भाई को ये सॉन्ग प्ले कर दे, लिखा दिया ये सॉन्ग प्ले कर लिख दिया, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मानूर समझाना बाद में, अभी टाइम नहीं है। और फरीन शहजादी कह रही हैं जिंदगी और चाय में एक बात यकसा है, तलख है मगर फिर भी इज्तनाब नामुमकिन। चाय पियेंगे आप? कह रही है चाय बना रही हूँ इस वक्त, बड़ी अच्छी बात है मेरी प्यारी सी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इस वक्त चाय की यकीन माने बेहतरीन किस्म की तलब थी और आज इत्तफाक से मैंने चाय नहीं पी। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। वैसे आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा कोई शख्स या मेरा कोई ऐसा लिसनर नहीं बचा जिसका मैंने गाना ना चलाया हो, हर एक के ट्रैक्स चलाएं, आखिर तक जो फरमाइश करते रहे उनकी भी चलाता रहा। हमारे एक भाई ने कहा था भाई सराय की गाना सही होना चाहिए ना सही है जी, तो सराय की गाना भी हो जाए ए एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब लाला को, आप सुन रहे हैं तो सुनते रहे। और मुश्क का मैसेज आया है, कायनात का सॉन्ग भूल गए जिन, वो खुशबू मुश्क मुश्क लैला हम नहीं बोले, उनके लिए गाना हम चलाएंगे।

Edelbart, Raheem

ये बात 1960 थी। और देखिए 63 साल पहले का ये म्यूजिक हमें आज भी लगता है कि जैसे आज ही की बात है। और वक्त 2 बजने में भी कुछ वक्त बाकी है। और जनाब इसके साथ साथ अब आती है कि और खूबसूरत एक म्यूजिक शामिल करती हैं। अमित शकील साहब क्या कहते हैं जनाब? कहते हैं जनाब सर वक्त के साथ चलना है लेकिन पुराना वक्त भूल नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है? वक्त के साथ साथ चलने के लिए कहते आगे दौड़ने के लिए आपको माजी को साथ लेकर ही दौड़ेंगे तो अब आपकी दौड़ जरा कामयाब भी होगी। वरना वो बात है जब आगे दौड़ेंगे और पीछे को भूल जाएंगे तो फिर आपको ये याद नहीं होगा हम थे क्या, हमें तो यही पता नहीं होगा तो आगे हम क्या करें। पहले ये तो पता हो हमारा बैक क्या है, हम पीछे थे क्या, कहां से चले कहां से हम, तो ये भी तो जरूरी है। इसमें हो नहीं सकता कि हम आगे दौड़े पीछे अपने माजी को भूल जाए। पास्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए। पास्ट के जब आप पास्ट को याद रखते तो आगे दौड़ने में आपको बहुत सारी चीजें वो आपका साथ देता है, आपको बताता है, वो तमाम चीजें आपको आगे नया रास्ता दिखाती हैं आपको। और जना फिर कैसे भूल जाएं सब शोभी भाई, बस याद करेंगे। कितना मर्जी एआई का दौर आ गया है, एआई आ गया, बात तो एआई है मगर एआई जो कुछ आपको दे रही है, एआई जो कुछ आपके सामने ला रही है जनाब, वो एआई जो है ना आपको पता है तो वो इसी नेट पे पड़ा हुआ ना, वो कहीं ना कहीं किसी ने किसी ने छोड़ा हुआ है, वो सब निकाल के आपको दे देती है, बना के दे देती है। मगर बात वहीं आ जाती है कि जो चीज क्लैरिफिकेशन आपको एक आपकी मैनुअल आपकी अपनी आवाज से अपने हाथ से मिलती है वो एआई में नहीं आएगी। कुछ भी कर लें उससे साफ जाहिर होगा कि ये एआई का कमाल है, ये आपका कुछ नहीं है, इसमें एआई का कमाल है। एआई कुछ भी, और फिर एआई का एक दौर है, ये भी एक दौर है, इतने सारे दौर से हम गुजरे, एक दौर ये भी सही, इससे भी गुजर जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है ये। और जब हम इसके बाद फिर हमें ज्वाइन किया राबिया जावेद, हमें ज्वाइन कर चुकी, कहती हेलो वेलकम आरजे, थैंक यू राबिया जावेद, आपको भी वेलकम कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। और अब आते हैं एक आवाज मैं सोच रहा हूं अब आपको सुनाता हूं, आवाज मेहदी हसन खान साहब,

चीज है ना, बिल्कुल प्यार वाकई इंसान को इंसान बना देता है। अगर वो बंदे का पुत्र बनना चाहे तभी बनाएगा प्यार भी, वरना प्यार भी कुछ नहीं कर सकता। प्यार भी बस वही है कि इंसान खुद बनना चाहे इंसान तो बनेगा ना, वरना बंदे का पुत्र क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। वो जहां रहेगा वहीं का वहीं रहेगा, पामे प्यार हो पामे कुछ भी हो। खैर जी, आते हैं अब कुछ इधर। खुर्रम सलीम भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, कैसे हैं आप? मैं सर ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद जनाब आती हैं कुछ अहमद शकील साहब, क्या कहते हैं? कहते हैं जनाब के लेकिन यह है कि शुरुआत जो 1950 से शुरू हो गई थी और फिर वन साइडेड जो है वो स्लाइड शो ऑन वाइट क्लॉथ ऑन वॉल और कच्ची टाकी जी हाँ, टू डे प्रोजेक्टर और फिर तब कच्ची टाकी थी और कुछ जो है वो कैसे बोल सकते, बिल्कुल हकीकत है। अच्छा ये बात तो हकीकत है, ये मतलब ये चीजें क्योंकि जब चीजें बन रही थी और वो सब चीजें हो रहा था, प्रोजेक्ट वो आया और फिर तमाम चीजें वो बनने लगी उस पर, फिर वो बिल्कुल हकीकत है, ये इसमें कोई शक नहीं है। स्लाइड शोज में बनने लगे जब उस पर जाके स्लाइड पर जला के फिर उसको बना के और स्लाइड पर तमाम स्लाइड बनाने के बाद वो सब चीजें शुरू हो गई थी, ये हकीकत है। उसके बाद जनाब फिर अहमद शकील साहब क्या कहते हैं जनाब, कहते हैं जनाब तब कैसेट होती थी और अगर पिछली वाला गाना कैसेट में लिसन करने के लिए पेंसिल से जी रील घुमाना पड़ती थी। जी हाँ, ये मैंने बहुत किया। जब प्रोग्राम में हमें FM 100 शुरू हुआ तो वो दौर वाकई यही दौर था कि जब हमने आप सबकी अपने सुनने वालों की फरमाइशें पूरी करते थे तो जब हाथ में बॉल पेन होता था वो अपना और वो बॉल पेन से बस आपसे बात हो रही है और उससे बॉल पेन से उसको सेट कर रहे हैं। इतनी सारी कैसेट मेरे सामने रखी हुई थी, मैं रख के बैठता था क्योंकि मेरा 4 घंटे का शो रात को 12 से 4 बजे 4 घंटे का शो होता था तो उसमें गजल भी और वो तमाम चीजें तो वो लेके फिर उससे वो देखते थे कि यार ये कैसेट पे ये गजल ये गाना जो है 3rd नंबर पे 4th नंबर पे उसको फिर उसके हिसाब से घुमाया। अंदाजा इतना हो गया था कि वो एक्सेट वहीं जाके वो पता लग जाता कि यार ये यहाँ पर है और वो लगाया और प्ले कर दिया। तो ये दौर होता था गाने को आगे पीछे करने के लिए भी और उसके साथ फिर एंड मेमोरी स्लॉट जो मिली लैपटॉप को वो भी कैसेट की वजह से। जी बिल्कुल, क्योंकि कैसेट में चीजें वो सारी आवाज रिकॉर्ड होती थी। और उसके बाद जनाब फिर क्या कहते हैं और इसी फिर जनाब वजह से हैं शोभी भाई और ये आजकल की जनरेशन के लिए अजीब होगा लेकिन तरक्की भी तभी होती है जब आप जनाब पिछली इन्वेंशन को ना भूलें। बात हकीकत है क्योंकि हमें जब पिछला कुछ याद होगा कि हम चले कहाँ से थे, आज अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो ये हम कहाँ चले कहाँ से थे, चलते चलते ये मंजिल हमें अब मिली है ना ये, और जब इसी तरह चलते जाएंगे तो ये चीज खत्म हो जाएंगी, हम और आगे निकल जाएंगे तो पता हमें रहेगा कि हम कहाँ से चले कहाँ से थे और कहाँ किन किन जगहों पर स्टॉप करते हुए किन किन चीजों को छूते हुए देखते हुए और गुजारते हुए अपने हाथों से तजुर्बा करते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। तभी तो हम कुछ कह सकें जब पता ही नहीं होगा किसी चीज का हम चले कहाँ से थे, ये नहीं पता होगा कहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले थे यार, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो बस ये देखा ही बाकी पता नहीं क्या था। तो ये चीजें और कैसेट का दौर, फिर कैसेट का दौर, क्या कैसेट का दौर। अच्छा उसमें फिर पता उस वक्त कैसेट मेटल कैसेट भी आती, बड़ी वजनी कैसेट मेटल कैसेट होती थी, बड़ी हैवी कैसेट होती थी, TDK की, सोने की, मैक्सेल की, बड़ी महंगी भी होती थी वो कैसेट। खास तौर पे जो मास्टर कैसेट जो होती थी वो मास्टर के तौर पे यूटिलाइज होती थी, इस्तेमाल होती थी आमतौर पर, क्योंकि मैं भी जब बिना का गीतमाला बनाता था तो वो आमतौर पर मास्टर के लिए जो है वो ऐसे कैसेट इस्तेमाल करते हैं जिसमें जरा सा जिसका क्वालिटी भी अच्छी हो और साउंड क्वालिटी भी जिसमें अच्छी है तो वो कैसेट हम यूज करते थे। तो ये सिलसिला तो बात वही है। अब वो कहते ना बस बात चल निकली, अब देखे कहाँ तक पहुंचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे, और अब जब यहाँ तक पहुंची ये बात तो अब हम यूं करते हैं कि राम एक

FM 100. FM 100. 100. 100. 100.